सुप्रभात अंबाला, आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन है आज के प्रसारण में। आज है 15 जून 2026 सोमवार, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या 2083 विक्रम संवत। अंबाला में सूर्य उदय हुआ है 5:20 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:26 पर। आज वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे भी मनाया जा रहा है।

इंसान को जब थोड़ा सा भी अधिकार मिल जाता है तो वो अभिमानी प्रभु परमात्मा के भी विपरीत बोलने लगता है और ऐसे घिनौने कार्य करता है जिन्हें देखकर देवता भी रो पड़ते हैं।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुनिए और सुनाइए रेडियो विविधता, सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 एफएम पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का

0: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज सोमवार है और लेके आया हूं स्वस्थ चर्चा का एक और एपिसोड। कई बार कुछ गुप्त रोग हमारी देह से ऐसे जुड़ जाते हैं कि हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। शर्म या झिझक के कारण हम अपने अपनों से या डॉक्टर से बात नहीं करते। लेकिन याद रखिए, बीमारी छिपाने से नहीं, बताने से ठीक होती है। जब तक हम बोलते नहीं तब तक इलाज में देर हो जाती है, इसलिए समय रहते सही सलाह लें, डॉक्टर से खुलकर बात करें। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, इससे शर्म से नहीं समझदारी से बचाइए। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो कई बार लोग खुलकर चर्चा नहीं कर पाते, लेकिन आज हम उस विषय पर बात करेंगे जो लाखों लोगों को प्रभावित करता है। विषय है बवासीर, फिशर, फिशुला और अन्य गुदा संबंधी रोग। आज हमारे साथ प्रसिद्ध सर्जन और जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर सतपाल गुप्ता जी हैं, जो अंबाला के प्रसिद्ध शार सूत्र विशेषज्ञ है। डॉक्टर सतपाल गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन स्टूडियो रेडियो वितस्ता में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी श्रोताओं को भी मेरा धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब, ये चर्चा शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपना संक्षिप्त सा परिचय दें ताकि हमारी श्रोता आपको अच्छे से जाने।
1: मैं आयुर्वेदिक सर्जन हूँ, अंबाला कैंट में महेश नगर जगह है, 136 महेश नगर में मेरा हॉस्पिटल है, बवासीर हॉस्पिटल के नाम से, गुप्ता बवासीर हॉस्पिटल। और मैं लगभग 42-43 साल से यही सर्विसेज दे रहा हूँ। और मैं बवासीर, भगंदर, फिशचुला जिसको भगंदर कहते हैं, और फिशर, समस्त गुदा के रोगों का जितना भी इलाज है वो मैं सब करता हूँ। और जितनी देर से मैं काम कर रहा हूँ सब मेरा कार्य जो है सक्सेसफुल रहा है अभी तक। और हमारे वाले में जो मैं जितनी भी सर्जरी करता हूँ मैं क्षार सूत्रा से करता हूँ। इट इज ए मेडिकेटेड थ्रेड, आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ हम इसको बनाते हैं। बेसिकली क्या है, जब भी मनुष्य के कोई ट्रीटमेंट करते हैं उसकी प्रकृति के अनुसार उसके जो है हम थ्रेड की एप्लीकेशन करते हैं। प्रकृति के बीच में हम वात, पित्त, कफ, हमारे तीन दोष हैं, इनको सम अवस्था में रहेंगे तो मनुष्य बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर किसी में भी थोड़ा बहुत भी जो है कमी आ जाती है, कुछ भी है, तो कोई भी रोग लग सकता है। इसी तरीके से बवासीर, भगंदर और फिशर, ये सब चीजें जो है दोष के ऊपर, तीनों दोषों के ऊपर आधारित हैं, और उसी के अनुसार उसकी चिकित्सा की जाती है। और उसी के अनुसार जो थ्रेड क्षार सूत्र हम बनाते हैं, डिफरेंट मटेरियल से बनाते हैं हम, तो मतलब मनुष्य की प्रकृति के अनुसार जो हम क्षार सूत्र लगाते हैं। एंड इट इज ए सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। और हमारे ट्रीटमेंट के बीच में दोबारे से होने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं।
0: डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहते हैं कि बवासीर क्या होती है और इसके मुख्य कारण क्या है।
1: बवासीर एक गुदा का रोग है जिसके बीच में मनुष्य को जो हमारी जितनी ब्लड वेसल्स हैं वो फूल जाती हैं, फूल करके बढ़ने लग जाती हैं, और उनमें से कई बार ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, यही एक बवासीर है।
0: जी डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसके जो मुख्य कारण है वो क्या है।
1: मुख्य कारण इसका कॉन्स्टिपेशन है
0: जी,
1: हमारा गलत तरीके से रहन सहन है, हमारे जो दिनचर्या है उसके बीच में जो कमी आ जाती है। जैसे आप जो है पहले टाइम में तो आप घोड़ों के ऊपर चलते थे
0: जी,
1: बड़े उबड़ खुबड़ जगह में चलते थे, नीचे प्रेशर पड़ता था, उसकी वजह से नसें फूल जाती थी, बवासीर बन जाती थी। आजकल लोग मोटरसाइकिलों के ऊपर भागे जाते हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, कारों में जाते हैं, बड़ी सड़कें टूटी हुई, साइकिल के ऊपर जाते हैं कुछ लोग, इस तरीके से जो है नीचे प्रेशर पड़ता है वेन्स के ऊपर या आर्टरीज के ऊपर, उसकी वजह से बवासीर होती है। दूसरा कारण ये भी है कि जेनेटिक, अगर पेरेंट्स को है तो बच्चों को भी वो आ सकती है, और उसके बीच में क्या होता है उसको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं कोई ठीक होता, बवासीर का कोई ही ऐसा केस होता होगा जो कोई ठीक ना हो। इसके ठीक करने के दो तरीके हैं, हम मेडिसिन से भी उसको ठीक कर लेते हैं, और कईयों में सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है। मैंने जो कॉन्स्टिपेशन बताई है, कब्ज, ये रैशनैलिटी

0: उसके साथ है
1: जी।
0: जिस किस्म का हम भोजन लेते हैं
1: जी,
0: अगर उससे कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो डेफिनेटली इसके बीच में, बवासीर के बीच में वो अवॉइड करना चाहिए
1: जी।
0: अगर हम पानी की मात्रा कम लेंगे उससे भी कब्ज रहेगी, वो भी एक बवासीर का कारण हो सकता है। नेचुरली आम आदमी कम से कम 3 लीटर पानी उसको 24 घंटे में कंज्यूम करना चाहिए
1: जी।
0: अगर वो कंज्यूम करता है कॉन्स्टिपेशन के कारण, उसका जो कारण कुछ जो पानी की वजह से है वो कुछ कम हो जाता है उसके बीच में।
1: जैसे आपने अभी घोड़े की बात की या बाइक की बात की, तो इसका मतलब ये है कि अगर ज्यादा देर तक एक जगह बैठा जाए क्या वो भी इसका कारण हो सकता है?
0: ये सेडेंटरी लाइफ हो जाती है उसके बीच में, हो सकता है वो भी कॉन्स्टिपेशन को बुलावा देने वाली बात है
1: जी।
0: और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी लोग हैं आज के टाइम के बीच में, लोगों के बीच में मोबाइल देखने की, अखबार पढ़ने की ये आदत बहुत ज्यादा है। बहुत से लोग क्या करते हैं, टॉयलेट के बीच में जाते हैं और वहां बैठ करके कभी मोबाइल देख रहे हैं, कभी अखबार पढ़ रहे हैं या सिगरेट पी रहे हैं, और वहां ज्यादा से ज्यादा समय बैठते हैं और बैठने के साथ ही वो नीचे प्रवाहन करते हैं, जोर लगाते रहते हैं। जब वो जोर लगाते हैं तो खून की नसें फूल जाती हैं और वो भी एक बवासीर का मेन कारण है।
1: ये भी कारण हो सकता है। अच्छा, इसके साथ जुड़ा हुआ एक और बात पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब, वजन बढ़ना क्या इसका एक कारण हो सकता है?
0: मोटापे के साथ इसका कोई ज्यादा लिंक नहीं है
1: जी।
0: मेन तो ये पतले आदमी को भी होगी, मोटे आदमी को भी हो जाएगी,
1: किसी को भी हो सकता है,
0: किसी को भी ये हो सकता
1: जो
0: अगर हमारे जीवन शैली के बीच में कुछ कमी आती है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है, एक्सरसाइज नहीं कर पाते, पानी कम ले रहते हैं, हमारा खान पीन ठीक नहीं है। खाने पीने से मतलब क्या कि हमारे जो दोष है वात पित्त कफ असम अवस्था में हो जाते हैं, जब असम अवस्था के बीच में होंगे तो वो नुकसान करके बवासीर को भी पैदा कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, इस बीमारी के बारे में इस बदलते दौर में कितने जागरूक हैं लोग, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में लोग ज्यादातर बात नहीं कर पाते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या अनुभव है?
0: जो पहले समय हुआ करता था उस टाइम में लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं थी
1: जी,
0: वो आपस में बात भी नहीं करते थे
1: जी,
0: अपने घर में भी नहीं बात करते थे, डॉक्टर से भी नहीं बात करते थे और दोस्तों के बीच में भी कभी बात नहीं करते थे। लेकिन आज के दौर में थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हुआ है, वो कुछ बात करने लगे हैं। कई बार अपने जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, कुछ एक के फ्रेंड्स लेके उनको आ जाते हैं, कुछ एक के जो है रिलेटिव या फैमिली मेंबर्स वो लेके आते हैं, लेकिन अभी भी वो बहुत कम है, लोग इससे जागरूक नहीं है। पहले से तो बेटर है अब, लेकिन अभी भी बहुत कम है, लोग इसको छुपाते हैं, बताना नहीं चाहते और इसकी वजह से वो उनकी बीमारी बढ़ जाती है कई बार।
1: अब इस कार्यक्रम के माध्यम से अंबाला के श्रोताओं को जो हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे कि अगर इस तरीके की कोई समस्या होती है तो बिना संकोच के उनको डॉक्टर के पास आना चाहिए?
0: देखिए, अगर किसी को ऐसी समस्या है और वो अपने परिवार वालों को नहीं बताना चाहता है
1: जी,
0: तो उसको फ्रेंड सर्कल में जरूर बतानी चाहिए। फ्रेंड सर्कल एक ऐसा सर्कल है जिसमें आप हर किस्म की बातचीत कर सकते हैं
1: और
0: उसका समाधान भी मिल जाता है
1: जी।
0: अगर आप पेरेंट्स को बताओ, अपने परिवार के मेंबर्स को बताओ, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, अपने श्रोताओं को ये चीज नोट कर लें, अगर पेशेंट को बीमारी शुरुआत के बीच में पता चल जाती है और डॉक्टर के पास जाता है तो उसमें ऑपरेशन के बगैर दवाइयों से ठीक हो जाता पेशेंट। आचार्य सुश्रुत ने भी कहा है, क्योंकि जितना भी हम क्षार सूत्रा का काम कर रहे हैं ये आचार्य सुश्रुत जी की सर्जरी देन है हमारे पास, उन्होंने भी लिखा है कि अगर बीमारी नवीन है, नूतन है, शुरुआत के बीच में है तो वो औषधि के साथ ठीक हो सकती है। बवासीर की स्टेजेस जो हैं 4 स्टेजेस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर वो फर्स्ट डिग्री के बीच में, इनिशियल स्टेज के बीच में हमारे पास आ जाता है तो मेडिसिन से 100% क्योरेबल है
1: जी।
0: अगर वो फर्स्ट स्टेज निकल गई है, फिर अगर हम कोई भी मेडिसिन दें, कोई भी दवाई खाएं, कोई कहता जी इसमें केले के साथ दवाई खा लो, कोई कहता है इसके लिए आप ये खा लो, वो खा लो, कोई दूध के साथ, कई तरीके बता देता है लेने का
1: जी,
0: लेकिन वो नहीं ठीक होती, उसके बीच में तो समय वेस्ट करते हैं आप। कोई ऐसी दवाई भी नहीं, आयुर्वेदिक दवाई भी नहीं है जो उसको जड़ से खत्म कर दे अगर फर्स्ट डिग्री निकल जाती है। वो है कि ब्लीडिंग बंद हो सकती है कुछ समय के लिए, लेकिन कुछ समय के बाद वो फिर होने लगेगी। फिर उसका जो परमानेंट रेमेडी है वो क्षार सूत्र के साथ सर्जरी है।
1: यानी कि हमारी जो दिनचर्या है उसमें अगर हमें कोई भी ऐसी समस्या होगी तो हमें सबसे पहले बिना समय गवाए डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
0: उनको डॉक्टर के साथ संपर्क करेंगे तो उनका, अगर वो जैसे इनिशियली भी आ गए तो दवाई से ही वो साध्य हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब, आपने क्षार सूत्र की बात की, आपसे जानना चाहेंगे कि क्षार सूत्र क्या है एक आम जन के लिए?
0: क्षार सूत्रा जो आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ एक थ्रेड तैयार किया जाता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बीच में डॉक्टर पीजे देश पांडे जी हुआ करते थे, उन्होंने क्षार सूत्रा को जो है शुरू किया था। पुरानी पद्धति को उन्होंने दोबारा से शुरू किया था जो हमारे ऋषि मुनि किया करते थे
1: जी।
0: वो इंडिया के बीच में फर्स्ट आदमी है जिसने इसको क्षार सूत्रा को शुरू किया था। जब वो शुरू हुआ तो उन्होंने इंडिया गवर्नमेंट के बीच में अपने केस को रिप्रेजेंट किया और इंडिया के बीच में 6 सेंटर, बड़े सेंटर जैसे पीजीआई, एम्स वगैरह, इस तरह के 6 सेंटर जो है उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको अलॉट किया तो कंपैरेटिव स्टडी के लिए मॉडर्न सर्जरी और क्षार सूत्रा सर्जरी के लिए उन्होंने वो एक एक ब्रांच बना दी सब हॉस्पिटल्स के बीच में। तो उसके बीच में जब इसके जो ट्रायल हुए तो हमारे क्षार सूत्रा के रिजल्ट जो है 96.4% आए थे, जो कि बहुत ज्यादा है, जबकि मॉडर्न सर्जरी के बीच में इसके रिजल्ट कम थे।
1: जी जी। क्या बवासीर हमेशा ऑपरेशन से ही ठीक होती है डॉक्टर साहब?
0: मैंने अभी अभी आपको बताया है कि अगर इनिशियल स्टेज के बीच में आ जाता, फर्स्ट के बीच में, शुरुआत के बीच में आ जाता तो मेडिसिन से ठीक हो जाती है। अदरवाइज कोई कहे मैं आयुर्वेदिक दवाई खा रहा हूँ, मैं दूध पी के ठीक कर रहा हूँ, मैं कॉन्स्टिपेशन को दूर कर रहा हूँ, लेकिन वो समय पास करने वाली बात है। अगर कहो कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए, कभी ठीक नहीं होती जब तक कि उसको ऑपरेट नहीं करते। हाँ, इनिशियल स्टेज के बीच में डेफिनेटली ठीक होती है।
1: डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं फिशर की। ये भी अक्सर सुना जाता है, फिशर क्या है?
0: फिशर लैट्रिन का रास्ता टाइट हो जाता है
1: जी,
0: और उसमें जख्म हो जाते हैं, कट आ जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी उसका कारण हो सकता है। स्त्रियों के बीच में डिलीवरी के बाद हो जाता है ये
1: जी।
0: तो इससे बहुत से कारण है जो मैंने अभी भी बताया था, गलत खान पान हो गया है, कॉन्स्टिपेशन होने लग गया, आप लैट्रिन के बीच में बैठे हैं, जख्म प्रेशर पड़ पड़ के नीचे जख्म हो जाते हैं कॉन्स्टिपेशन की वजह से। तो इसके बहुत से कारण है, मुख्य कारण तो यही है इसके। उससे क्या है कि हमारे वात पित्त कफ दूषित हो जाते हैं, उसके बाद फिर कॉन्स्टिपेशन हुई और होने के बाद फिर ये फिशर की बीमारी हो जाती है। बेसिकली क्या होता है कि इसका जो लैट्रिन का रास्ता टाइट हो जाता है और कई बार उसमें जख्म हो जाते हैं, जख्म होने के बाद कई बार उसमें छोटा सा मांस बाहर नजर आने लग जाता है, उसको फिशर बोल देते हैं। और मेनली उसके बीच में सिम्टम रहते हैं कि लैट्रिन जाने के बाद मरीज को काफी काफी समय तक दर्द रहता है। शुरुआत के बीच में थोड़े टाइम के लिए दर्द हुआ, 5 मिनट के लिए, बढ़ता बढ़ता 10 मिनट के लिए, कुछ एक समय ऐसा आ जाता है कि उसको 2-2, 3-3 घंटे तक लैट्रिन जाने के बाद दर्द होता है। जब उसको दर्द होता है वो डर के मारे लैट्रिन भी नहीं जाता, लैट्रिन को रोकता है। लैट्रिन को रोकने से कॉन्स्टिपेशन और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब तक वो मल जो है गुदा के बीच में पड़ा रहेगा, रेक्टम के बीच में पड़ा रहेगा, वहां रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी पानी की
1: जी।
0: पानी बॉडी के बीच में एब्जॉर्ब हो जाएगा, बॉडी सोख लेगी उसको
1: जी।
0: उसके बाद वो मल फिर सूख जाएगा, सूखने के बाद कॉन्स्टिपेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी,
1: यानी कि समस्या जो है वो
0: और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी,
1: और बढ़ती चली। तो क्या फिशर को पूरी तरह से रोका जा सकता है?
0: फिशर के लिए तो हम मेडिसिन दे करके जो छोटे मोटे फिशर है वो मेडिसिन के साथ बिल्कुल ठीक हो जाते हैं
1: जी।
0: जिनके बीच में स्किन का कोई टैग बाहर नहीं है उसके ठीक होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है दवाई के साथ। अगर मान लो उसके बीच में वो बार बार तकलीफ हो रही है, दवाई देने के बाद ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर हो गया, फिर रिकरेंस होती रहती, बार बार होता है, तो उसको ऑपरेट करवा लेना चाहिए।
1: तो श्रोताओ, आपने सुना डॉक्टर सतपाल गुप्ता जी ने बताया कि हमारी जीवन शैली इस बीमारी के लिए सबसे बड़ा नुकसान कर सकती है। अगर हमारा खान पान सही नहीं है, अगर हमारी दिनचर्या सही नहीं है, अगर हम कम से कम 3 लीटर पानी दिन में नहीं पीते हैं, तो हम इस विषय पर डॉक्टर साहब से बात जारी रखे हुए हैं। आइए आपको सुनाते हैं डॉक्टर साहब का एक मनपसंद गीत।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। हम आज बात कर रहे हैं डॉक्टर सतपाल गुप्ता जी के साथ, जो क्षार सूत्र के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपसे अब बात करना चाहेंगे फिस्टुला के बारे में। ये शब्द थोड़ा डरावना सा लगता है, ये क्या बीमारी है?
1: फिस्टुला जो है एक बहुत टेढ़ी बीमारी है, जिसका इलाज क्षार सूत्र के साथ संभव है। आम तौर पे देखा कि ओपन सर्जरी के बीच में बार बार होता रहता है, तो क्षार सूत्र से ये ऑलमोस्ट ठीक हो जाता है। सबसे पहले मैं इससे पहले कुछ इसके बारे में कुछ बताऊं, मैं आपको बताता हूं कि फिस्टुला होता क्या है।
0: जी,
1: फिस्टुला जो है गुदद्वार, इसके 2 सेंटीमीटर दूर तक एक फुंसी हो जाती है, फोड़ा जिसको बोल देते हैं, और वो उसका एक रास्ता जो है लैट्रिन के रास्ते में खुलता है, और एक रास्ता वो बाहर जो फोड़ा नजर आ रहा है। एक ये इतनी पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिसका एक रास्ता लैट्रिन के रास्ते में खुल रहा है, दूसरा स्किन के ऊपर लैट्रिन के रास्ते के 2 सेंटीमीटर की दूरी के बीच में मिलता है, इसको फिस्टुला बोल देते हैं। कई बार क्या होता है कि फिशर की वजह से भी फिस्टुला हो जाता है, पाइल्स की वजह से फिस्टुला हो सकता है, हमारे खान पान की वजह से भी हो सकता है। कई बार क्या होता है, नॉन वेज अगर हम ले लेते हैं, कुछ छोटी मोटी कार्टिलेज, इसको हड्डी बोल देते हैं, बारीक सॉफ्ट हड्डी जो है उसको कार्टिलेज बोल देते हैं, नीचे आकर के अगर वो गुदा के बीच में आकर के कोई जख्म कर देती है, वहां इन्फेक्शन होकर के फोड़ा बन जाता है, जो कि लैट्रिन के रास्ते वो वहां से निकल के फोड़े के इन्फेक्शन होकर के बाहर लैट्रिन के रास्ते को क्रॉस करके बाहर निकल जाता है, और स्किन के ऊपर वो एब्सेस बना लेता है, ये फिस्टुला हो जाता है।
0: तो इसका मतलब ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, अगर समय रहते, जैसे अभी हमने बात की फिशर की, अगर समय रहते उसका इलाज ना हो तो क्या वो फिस्टुला के लिए एक रास्ता बना लेता है?
1: अब जब से क्षार सूत्र आया है, इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल संभव हो गया है।
0: जी,
1: पहले समय के बीच में, पुराने समय के बीच में फिस्टुला जब होता था, पस भर जाती थी, बहुत से लोग इसी की वजह से मर जाते थे। लेकिन जब से सर्जरी आई है, कोई भी सर्जरी, मे बी ओपन सर्जरी, मे बी क्षार सूत्र सर्जरी, ये इंसिडेंस बहुत कम हो गए हैं। इसमें पस भर जाती है, उसकी वजह से पेशेंट्स को सेप्टिक हो जाता है कई बार, तो एक घातक बीमारी रहती है।
0: यानी कि समय रहते अगर किसी भी बीमारी का समाधान किया जाए, इलाज किया जाए, डॉक्टर के पास डिस्कस किया जाए, या अगर क्षार सूत्र का ऑपरेशन किया जाए, तो समस्या का समाधान किया जा सकता है,
1: 100% किया जा सकता है।
0: डॉक्टर साहब, कई बार लोग इन रोगों को लेकर घरेलू नुस्खे अपनाते हैं या इंटरनेट से इलाज ढूंढते हैं, क्या ये सही होगा?
1: देखिए, फिस्टुला की पोजीशन ये होती है, कई बार उसमें जो ग्रेनुलेटेड टिश्यू होता है उस पाइप के बीच में, फिस्टुला ट्रैक के बीच में, वो ड्राई कर जाता है, उसमें इन्फेक्शन नहीं होती, लेकिन रास्ता वहीं पड़ा रहता है, पस उसमें आती नहीं। पेशेंट सोचता कि मेरा बिल्कुल ठीक हो गया, मैंने इंटरनेट से देखा था, ये दवाई खा ली, मेरे डॉक्टर ने ये दवाई दे दी, मेरे घर वालों ने मेरे को ये दवाई दे दी, लेकिन वो उसका परमानेंट रेमेडी नहीं है। कुछ समय के बाद, साल के बाद, 6 महीने बाद, महीने बाद, 15 दिन के बाद, 2 साल के बाद, वो फिर हरा हो जाता है, उसके बीच में से फिर पस आने लग जाती है। जब तक कि उसको जो हम ऑपरेट नहीं करते, वो ठीक नहीं होता। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके बीच में इसको ऑपरेशन के साथ भी ठीक करना बहुत मुश्किल है, बार बार होता रहता है, और कई बार तो इंटेस्टाइन के बीच में, हमारी आंतड़ियों के बीच में कहीं पे भी इन्फेक्शन होकर के, जैसे अपेंडिक्स के बीच में इन्फेक्शन हुई है, वहां का फिस्टुला भी जाके लैट्रिन के रास्ते में निकल जाता है।
0: अच्छा,
1: जो कि बहुत डेंजरस है, और वो उसको क्योर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो इसको समय रहते इसका ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए।
0: यानी डॉक्टर साहब, आम जिंदगी में जो हमारी दिनचर्या है, उसमें एक सरल सी बात मुझे जो समझ आई वो ये है, जो हमारा पेट है वो हर दिन साफ होना जरूरी है।
1: बिल्कुल, कॉन्स्टिपेशन तो होनी नहीं चाहिए, अगर होती है तो बवासीर, फिशर, फिस्टुला, कोई भी बीमारी इसमें हो सकती है।
0: तो एक और हम म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि उनका अगला पसंदीदा गीत कौन सा है।
1: देखिए, मैं आपके यहाँ स्टूडियो में आया हूँ, उसके लिए तो आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और अगर आप हमारे पसंद का भी गीत सुनाते हैं तो उसका तो मुकाबला ही कोई नहीं है। तो अगर आप सुनाना चाहते हैं तो सुनाइए, जीना यहाँ मरना यहाँ, अगर आप पॉसिबल हो सके तो।
2: जीना

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो।

क्या आप जानते हैं रेडियो सुनना क्यों जरूरी है? क्योंकि रेडियो सुनते समय हम कोई भी काम कर सकते हैं, और हमें रेडियो से कई बार ऐसी जानकारी मिलती है जो हमारा जीवन भी बदल सकती है। तो सुनते रहें रेडियो वितस्ता 90.0 FM, हम सफर जिंदगी का, अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो।

बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें

0: आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त राहुल अलियान, लेकर आया हूं कहानियों का सिलसिला। आपके लिए जो कहानी लाया हूं, उस कहानी का शीर्षक है परिवार में सहयोग और सम्मान की शक्ति। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत बड़ा परिवार रहता था। परिवार में दादा दादी, माता पिता और उनके बच्चे थे। परिवार के हर सदस्य की अपनी अपनी जिम्मेदारियां थी, लेकिन सभी एक दूसरे का सम्मान करते और एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। गांव के तालाब का पानी सूखने लगा था और गांव के लोग परेशान हो गए थे, क्योंकि यह पानी उनके खेतों के लिए जरूरी था। दादा ने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया और कहा,
1: हम सभी को मिलकर तालाब को फिर से भरने की कोशिश करनी होगी। यदि हम एकजुट होकर काम करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी।
0: सबने मिलकर काम शुरू किया। छोटे बच्चे पानी इकट्ठा कर रहे थे, महिलाएं खाना बना रही थी और पुरुष तालाब की मरम्मत कर रहे थे। परिवार का हर सदस्य अपनी अपनी भूमिका निभा रहा था। काम करते हुए दादा ने कहा,
1: यह काम केवल मेहनत से नहीं होगा, हमें एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान से काम करना होगा, तभी हम सफलता पा सकते हैं।
0: बहुत मेहनत के बाद तालाब फिर से भर गया और गांव के खेतों को पानी मिल गया। सभी लोग खुश थे। परिवार के हर सदस्य को समझ में आ गया कि यदि हम एक दूसरे का सम्मान करें और मिलकर काम करें तो हम किसी भी मुश्किल का हल निकाल सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार का प्रेम, सम्मान और सहयोग जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। परिवार में एकता और प्यार से ही हम हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। माता पिता का बलिदान और बच्चों का सम्मान दोनों ही परिवार की नींव होते हैं। यही परिवार के असली मूल्य हैं, जो हमें जीवन में सफलता और खुशी दिलाते हैं।

अगर आपके पास भी कोई मौलिक कहानी है तो आप हमें भेज सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर पर 7056413010 पर। अगर हमें वो कहानी अच्छी लगी तो मैं उस कहानी को अपनी आवाज देकर श्रोताओं तक पहुंचाऊंगा। मिलता हूँ एक और कहानी के साथ, तब तक आप खुश रहे, खुशहाल रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो।

0: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
1: भगत राम की बहना तू बन जा मेरी मैना, अब राज लुटे या ताज लुटे जब लागे तो से मैना।
2: रामा दुश्मन है

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

90.0 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: यू आर लिसनिंग FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
3: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
4: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

नमस्कार। FM 90.0 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो विस्तार, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त नरेश शर्मा। लघु कथाओं की श्रृंखला में आज और एक लघु कथा लेकर आपके बीच में हाजिर हुआ हूं, जिस लघु कथा का शीर्षक है दो पहिए। कॉलेज में सुखी वैवाहिक जीवन पर एक कार्यक्रम हो रहा था, जिसमें कुछ शादीशुदा जोड़े हिस्सा ले रहे थे। जिस समय प्रोफेसर मंच पर आए, उन्होंने नोट किया कि सभी पति और पत्नी शादी पर जोक सुना रहे हैं, हंस रहे हैं। ये देखकर प्रोफेसर ने कहा कि चलो पहले एक गेम खेलते हैं, उसके बाद इस विषय पर बात करेंगे। सभी खुश हो गए। कहा, कौन सा गेम? प्रोफेसर ने एक विवाहित महिला को खड़ा किया और कहा कि तुम ब्लैक बोर्ड पर 20-25 लोगों के नाम लिखो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारे हों। महिला ने पहले तो अपने परिवार के लोगों के नाम लिखे, फिर अपने सगे संबंधियों के नाम लिखे, दोस्तों, पड़ोसी और अपने सहकर्मियों के नाम लिखे। अब प्रोफेसर ने उसमें से कोई कम पसंद वाले 5 नाम मिटाने के लिए कहा। लड़की ने अपने सहकर्मियों के नाम मिटा दिए। प्रोफेसर ने कहा कि 5 नाम और मिटा दो। लड़की ने थोड़ा सोचकर अपने पड़ोसियों के भी नाम मिटा दिए। अब प्रोफेसर ने 10 नाम और मिटाने को कहा। लड़की ने अपने सगे संबंधियों और दोस्तों के नाम मिटा दिए। अब बोर्ड पर सिर्फ 4 नाम बचे थे, जो उसके मम्मी पापा, पति और उसके बच्चे का नाम था। अब प्रोफेसर ने कहा, इसमें से 2 नाम और मिटा दो। लड़की असमंजस में पड़ गई। बहुत सोचने के बाद बहुत दुखी होते उसने अपने मम्मी पापा का नाम भी मिटा दिया। सभी लोग हैरान और शांत थे, क्योंकि वो जानते थे कि गेम सिर्फ वो लड़की ही नहीं खेल रही थी, उनके दिमाग में भी यही सब चल रहा था। अब तो सिर्फ 2 ही नाम बचे थे, पति और बेटे का। प्रोफेसर ने कहा, और एक नाम मिटा दो। लड़की अब सहमी सी रह गई। बहुत सोचने के बाद रोते हुए अपने बेटे का नाम काट दिया। प्रोफेसर ने उस लड़की से कहा, तुम अपनी जगह पर जाकर अब बैठ जाओ। प्रोफेसर ने सबकी तरफ गौर से देखा और पूछा, क्या कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ पति का ही नाम बोर्ड पर रह गया? कोई जवाब नहीं दे पाया। सभी मुंह लटका कर बैठे थे। प्रोफेसर ने उस लड़की को खड़ा किया और कहा, ऐसा क्यों? जिसने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोसकर इतना बड़ा किया, उनका नाम तक तुमने मिटा दिया। अरे और तो और, अपनी कोख से जिस बच्चे को जन्म दिया, उसका भी नाम तुमने मिटा दिया। लड़की ने जवाब दिया, अब मम्मी पापा बूढ़े हो चुके हैं, कुछ साल बाद वो मुझे और इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो जरूरी नहीं कि वो शादी के बाद मेरे साथ ही रहे, लेकिन मेरे पति जब तक मेरी जान में जान है ना, तब तक मेरा आधा शरीर बनकर मेरा साथ निभाएंगे। इसलिए मेरे लिए सबसे अजीज मेरे पति ही हैं। प्रोफेसर और बाकी स्टूडेंट्स ने तालियों की गूंज से उस लड़की को सलामी दी। प्रोफेसर ने कहा, बिल्कुल सही कहा, तुम और सभी के बिना तो रह सकती हो, पर अपने आधे अंग यानी अपने पति के बिना नहीं रह सकती। मजाक मस्ती तक तो ठीक है, पर हर इंसान का अपना जीवन साथी उसका सबसे ज्यादा उसे अजीज होता है, इसलिए अपने जीवन साथी का सारा सम्मान करें, उसको स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें और स्वयं भी प्रसन्न रहें। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

0: ದೈಚು ಗೋಜಾಲ್ ನಮತ್ ಅಶಾರ್ಯ ಸಿಫರ್ ರೇಡಿಯೋ ವಿತಸ್ತಾ ಹಮ್ ಸಫರ್ ಜಿಂದಗಿ ಹೊಂದ್
1: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
2: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आपदा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

ये सफर है फिल्मी गीतों का, तय करेंगे आप अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। नमस्कार, आदाब। शहर होते ही कोई हो गया रुखसत गले मिलकर, फसाने रात के कहती रही टूटी हुई चूड़ी।

दर्द जगता है अक्सर दिल के इस नाजुक कोने में, जहां कभी प्यार पलता था सिर्फ तुम्हारे लिए। जहां से तुम्हारा गुजर हुआ, वहां के रास्तों को तुमने महकाया, वहां की वीरानी को गुलजार किया, और वहां के फासलों को तुम्ही ने मिटाया। तुम्ही ने दर्द दिया और तुम्ही ने दवा। अब यहां हमारे तन्हाइयां पलती हैं, थाम लेती हैं रुस्वाइयां दामन, और तुम्हारी याद में ये आंखें अश्कबार रहती हैं। जगता है दर्द अक्सर इस दिल के कोने में।

क्यों लगता है बरसों से शनासाई है, ये मखमली मौसम बेताब है तुम्हारे पैरों की चुभन के लिए। बदलते रुत सरगोशियां करती हवाएं, तुम्हारे दुपट्टे की खुशबू अब एहसास है मेरा। क्या तुम्हें याद है तपती दोपहरी के दामन में, यहां की फिजाओं को इन पानियों में हम बहाया करते थे, इन सूफियाना धुनों में आवाज से आवाज मिलाना, यही हमारी

ये मौसम है तुम्हारी यादों का, सावन का ही महीना था जब तुम लौट आए थे नंगे पांव, भीग चुके थे तुम्हारे कब कपाते होंठ, चेहरे की रौनक और सादगी से भरा कदे आदम जिस्म, धड़कने उदासी में लिपटी हुई थी, शायद अपना दर्द बयां कर रही थी।

मेरी पनाहगाहों में जो तुम ठहरती ता उम्र, शायद तुम्हारी यादों का मौसम खिल उठता मौसमी बहार की तरह।

नाम तेरा और जिक्र तेरा ही होता है। इन पानियों में लहरें उठती तो हैं पर अक्स बिखरती नहीं। ये साहिल रहते हैं बेताब इन पानियों को छूने के लिए। यहां शाम होते होते मुरझा गए अब ये भीगे मौसम और छिप गए चुप हो गए बुलबुल। इन काली खामोश घटाओं ने घेरा है सितारों को चांद को मेरी परछाई को और तुम्हारी मुस्कान को।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

मिली जुली गीतों की इस महफिल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं रमेश मराठा। नमस्ते, आदाब। कहीं उम्मीदों का चिराग बुझ गया, तारों भरी रात ने दम तोड़ दिया।

सूरज की मानिंद सफर पे रोज निकलना पड़ता है। बैठे बैठे दिन बदलेंगे, इसके भरोसे मत रहना। सावन का महीना आते ही बादल तो छा जाएंगे हर हाल में, लेकिन बरसेंगे, इसके भरोसे मत रहना। बहती नदी में कच्चे घड़े, रिश्ते नाते, हुस्न वफा, दूर तलक ये बहते रहेंगे, इसके भरोसे मत रहना।

तन्हाई में पुकारा किसने, इस लम्हे को संवारा किसने, दिल में लहर उठी है कोई, मुझको अभी पुकारा किसने, सब कुछ डूब गया साहिल पर, ऐसे किया किनारा किसने, मिलने लगा है इसमें सुकून, अब दर्द बनाया चारा किसने, बेहोशी के इस आलम से मुझको आज उभारा किसने।

धीरे धीरे खो जाती है अंधेरे के आगोश में। टिमटिमाते तारे आसमां में बिखराते हैं नजारे, चांद लगता है ऐसे जैसे बेकरार हो किसी की याद में। शाम ढलती हुई पर्वतों के पेड़ों पर मानो कुछ पल के लिए ठहर जाती है और सुरमई उजालों में चंपई अंधेरा एहसास दिलाता है दिलबर का, जो उससे मिलकर

के समंदर में हंसी लम्हे तलाशते कई बार गुजर जाती है तमाम जिंदगी, मगर वो खलिश, वो चुभन, वो प्यार का मीठा सा एहसास नहीं मिलता और यूं ही जिंदगी गुजर जाती है

एहसास एक जज्बा जो बसता है हम सभी की धड़कनों में, महसूस होता है सांसों में और आता है नजर चेहरे पे। आज भी ठहरे सागर में लहरों के कारवां बेताब है रक्स करने को, आज भी आईने दिल पर एक साया बेकरार है अपना अक्स भरने को। शायद तुम्हें मालूम नहीं तेरी तलाश में बहारों के फूल महके हैं, बुलबुल चहके हैं। क्यों जर्द पत्तों के मौसम में गुम हो गई हो,

दोस्तों मिले जुले गीतों का ये सफर आपने तय किया अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा बताइएगा जरूर। अब चाहेंगे आपसे इजाजत। नमस्ते।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

पेश है कार्यक्रम परिचर्चा एपिसोड 3। हमारे आज के मेहमान हैं श्रीमान विशाल शर्मा डारली। प्रस्तुत करेंगे भारत सोपोरी।

0: आप सभी का स्वागत है FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। लेके आया हूं कार्यक्रम परिचर्चा, जिसमें हम बात करते हैं कला की, संस्कृति की। तो आज आपको मिलवाता हूं एक अभिनेता निर्देशक से, जिनके रूह में बसा है अभिनय, जो इस कला की पूजा करते हैं और इस कला ने इनको देश विदेश में एक पहचान दी है। हमारे देश के नेशनल टेलीविजन पर अभी अभी संपन्न हुआ टीवी सीरियल जनूनियत में एक पिता की भूमिका इन्होंने निभाई है, जो दर्शकों को बेहद पसंद आया और पूरे देश ने बहुत सारा प्यार इनको दिया। आइए स्वागत करते हैं आज के आमंत्रित मेहमान श्री विशाल शर्मा जी का, जिनको विशाल डार्ली के नाम से भी जाना जाता है। सर, आपका स्वागत अभिनंदन FM 90.0 MHz स्टूडियो में।
1: नमस्कार भारत जी, और बताइए कैसे हैं आप?
0: मैं बहुत अच्छा हूं सर, आप कैसे हैं?
1: मैं भी बहुत अच्छा हूं, और आपके स्टूडियो में आकर तो और भी अच्छा लग रहा है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और आज हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे स्टूडियो में आए, और हमारा स्टूडियो आज पावन हो गया आपके आने से।
1: ये तो मेरी खुशकिस्मती है जी कि मुझे आपने यहाँ बुलाया और मैं यहाँ आया।
0: सर, इस कार्यक्रम में हम एक संक्षिप्त सी बात करते हैं आपके साथ, और जितने हमारे श्रोता है वो इच्छुक होंगे आपके बारे में जानने के लिए। आपको उन्होंने स्क्रीन पर देखा, एक किरदार में देखा, पर आज हमारे साथ बलजीत मेहता नहीं है, बल्कि आज हमारे साथ है श्री विशाल डार्ली जी। तो हम चाहेंगे कि आज हम विशाल जी से उनके दिल की बात जानने की कोशिश करेंगे, और जो प्यार लोगों ने टीवी स्क्रीन पर बलजीत मेहता जी को दिया है, और वही प्यार आज वो निछावर करना चाहते हैं श्री विशाल शर्मा जी से, जिनको विशाल डार्ली के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपना परिचय कृपया हमारे श्रोताओं को दें, ताकि वो आपके बारे में और जान सके और आपके दिल तक पहुंच सके।
1: भारत जी, ऐसा है कि तो आपने बता ही दिया, मेरा नाम है विशाल शर्मा, मैं बेसिकली पंजाब से हूं, पंजाब के जलंधर शहर से
0: जी।
1: और जो मेरा ये सफर है, ये बचपन से शुरू हो गया था
0: जी।
1: बचपन में मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में फिफ्थ क्लास में पढ़ता था, तब मैंने पहली बार स्टेज पे एक स्किट की थी स्कूल की ओर से
0: जी।
1: तो तब लगा कि कुछ करना चाहिए। फिर हमारे एक जलंधर दूरदर्शन में थे श्री सुरेंद्र साहनी जी, वो प्रोड्यूसर थे वहां पे, तो उनका एक सीरियल आता था, तो पंजाब में तब पहला हिंदी सीरियल शुरू हुआ था सांवली
0: जी।
1: तो उसमें उन्होंने मुझे, तब मैं शायद सेवंथ या एट में पढ़ता था, तो मुझे एक छोटा सा रोल दिया था उसमें। मुझे आज भी याद है, मैं उसमें चोर बना था और उसमें मेरा नाम था महेशी, मुझे अभी भी याद है वो दिन
0: जी।
1: तो वो मेरा पहला ऑन स्क्रीन था जिसमें मैंने कैमरा फेस किया था पहली बार। तो वो उसके बाद एक और मैंने किया ऐसा ही छोटा सा रोल। फिर धीरे धीरे ये मेरी ये एक्टिंग वाला काम तो हुआ नहीं। फिर ऐसे हुआ कि जब मैं

0: बुलाया वहां पे कि एक उन्होंने पत्थर बोलते हैं
1: जी,
0: निरंजन देसाई जी का था वो
1: जी।
0: तो उसपे मुझे एक छोटा सा पार्ट प्ले करना था कॉलेज स्टूडेंट्स का,
1: स्टेज पर
0: नहीं
1: स्क्रीन पर,
0: स्क्रीन पे दूरदर्शन के लिए
1: जी।
0: तो मैंने किया तो वहां मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट बना कि मुझे डायरेक्शन सीखनी है। तो फिर मैंने उनको अपना गुरु बना लिया, कहा जी आप मुझे इसमें डालो। फिर मेरा पहला कांटेक्ट पड़ा था दिल्ली दूरदर्शन में एज ए प्रोडक्शन असिस्टेंट
1: जी।
0: तो वहां से मेरी फिर डायरेक्शन वाली जर्नी शुरू हुई, वहां से मैंने सीखा, बहुत काम किया सर, दिन रात लगाया वहां सीखने के लिए। तो ऐसे मेरी ये जर्नी फिर डायरेक्शन की शुरू हुई।
1: विशाल सर, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, जब हमारे मन में कोई इच्छा हो कुछ करने की, कुछ अलग करने की, तो जब उसका रास्ता मिलता है तो वो अनुभव उस समय कैसा होता है? क्योंकि जो अवस्था है वो किशोर अवस्था है, ये आगे किस तरफ हमें लेके जाए, तो वो उस समय की आपकी फीलिंग कैसी रही होगी?
0: सर वो ऐसे है कि देखो अब मेरा इंटरेस्ट तो था इस फील्ड में, एक्टिंग में था, लेकिन जब मुझे मैंने देखा ना कि डायरेक्शन में जब मैंने उनको काम करते देखा तो मेरे मन में आया कि ये सीखना चाहिए, और परमात्मा की दया से वो रास्ते भी निकलते गए
1: जी।
0: जब वो रास्ते निकलते हैं तो आपको लगता है कि अब आप सही ट्रैक पे जा रहे हो, आप कुछ सीख जाओगे। तो ऐसा मैंने किया, गॉड ग्रेस, मुझे जो मेरे गुरु थे वो भी बड़े अच्छे मिले, उन्होंने मुझे हर जगह आगे रखा, मुझे साथ रखा, मुझे सिखाया, ऐसे चलता रहा। और मैं तो कहता हूं कि लोगों को कि अगर परमात्मा रास्ता दिखाता है, चलना आपने है, आप कैसे चलते हो, और वो आपको कहीं ना कहीं लेके जरूर जाएगा। देखो मुझे एक बात याद आ रही है कि बंदा एक चीज मन में बार बार बार बार बार बार सोचता रहे, सोचता रहे, सोचता रहे, सोचता रहे, तो आपको वो वहां पहुंचा भी देती है वो चीज।
1: तो अगर इसी बात को मैं दूसरे शब्दों में रखूं कि ऐसे कहा जाता है कि हमें अपनी जिंदगी में सपना देखना जरूर चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: जब आप सपना देखेंगे, अपना एक आप एक चीज बुनेंगे मन में, तो उसके लिए आप प्रयत्न करेंगे और वो सपना पूरा हो जाता, क्या ये सही है?
0: बिल्कुल सर, अगर आप सपना ही नहीं देखोगे आपको आपका एक गोल ही नहीं होगा। आपको सपने में तो आप सपना देखोगे तो आप उसको पूरा करने की कोशिश करोगे ना
1: जी,
0: तो सपना तो आना चाहिए ना।
1: तो इसके साथ ही जुड़ा एक और प्रश्न करना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले, अगर हम वो कोशिश करते कोई गलती करते तो क्या वो गलती हमें और अच्छाई की तरफ ले जाती है या वो हमें निराश करती है?
0: नहीं, गलतियां हमेशा सिखाती हैं। जब बंदा गलती जो हो जाती है ना उससे बंदे को सीख लेनी चाहिए, गलतियों से। आप वो कहते हैं ना इंसान गलतियों का पुतला है, तो आप गलतियों से सीखते हो, और अगर आप गलतियों से नहीं सीखे फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। गलती एक बार होगी, दो बार होगी, तीसरी बार वो गलती नहीं होनी चाहिए। तीसरी बार वो गलती नहीं होती
1: जी,
0: वो कुछ और ही हो जाता है फिर वो गलती नहीं होती, गलती एक या दो बार ही होती है।
1: यानी कि उससे जो हम सीखते हैं तो हम अगली बार कोशिश करते हैं कि हाँ, उस गलती को हम सुधारें।
0: बिल्कुल,
1: उसको सुधार के हम आगे चलते हैं। अगर वहां फिर एक और गलती हो जाती है उसको भी सुधारने का ऑप्शन है, पर एक ही गलती बार बार नहीं होती।
0: ना ना ना, फिर वो गलती नहीं रहती जी।
1: इसके साथ जुड़ा एक और प्रश्न मैं करना चाहूंगा और हमारे श्रोता सुनना चाहेंगे और जानना चाहेंगे, कला और संस्कृति के साथ आप कब से जुड़े हैं? थिएटर और एक्टिंग आपकी जिंदगी के लिए क्या मायने रखता है?
0: देखो जी, मेरे जो मैं अपनी फीलिंग बताऊं तो थिएटर जो है, थिएटर और हमारे टीवी में
1: जी
0: बहुत फर्क है
1: जी।
0: थिएटर एक आर्टिस्ट को, थिएटर बंदे को करना चाहिए,
1: तो
0: थिएटर से बंदा पॉलिश होता है, उसके अंदर का एक्टर बाहर आता है
1: जी,
0: उसको सीखने को मिलता है। लेकिन हमारे माध्यम और थिएटर के माध्यम में सिर्फ ये फर्क जरूर है कि थिएटर जो है वो हमेशा वो लाइव होता है
1: जी,
0: और उसमें कोई रीटेक नहीं होता
1: जी।
0: लेकिन हम जब टीवी पे करते हैं तो आपके पास ये चांस होता है कि आप उसको रीटेक कर सकते हो। और थिएटर ये होता है कि थिएटर आप पब्लिक के सामने करो, थोड़ा लाउड होता है उसमें हर चीज, उसमें आपकी वॉइस भी लाउड रहती है, उसमें एक्सप्रेशंस भी लाउड रहते हैं। लेकिन टीवी में माइक आपके यहाँ लगा है, आपको लाउड होने की जरूरत नहीं, वो खेलना और ये चीज थोड़ा फर्क है। लेकिन थिएटर करना बहुत जरूरी है, थिएटर करने से ही आदमी एक अच्छा एक्टर बन के बाहर निकलता है। मेरे हिसाब से थिएटर करना चाहिए।
1: अभी आपने कहा कि आपने जब अभिनय करना शुरू कर दिया, अभिनय के बदले आपका जो ध्यान है वो निर्देशन की ओर गया। अभिनय और निर्देशन में आप क्या अंतर समझते हैं?
0: देखिए, एक चीज ये है कि निर्देशक जो है, जैसे डायरेक्टर जो है वो कैप्टन ऑफ द शिप है
1: जी,
0: उसके दिमाग में पहले ही एक पिक्चर

0: बन जाती है, एक स्क्रिप्ट आती है जो बेस है हमारा, एक स्क्रिप्ट आई, स्क्रिप्ट को पढ़ा, स्क्रिप्ट के हिसाब से उसके दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है कि इसको मैंने कैसे प्रेजेंट, मेन क्या है, डायरेक्शन में क्या है कि हाउ टू टेक, आपके मन में क्या है, आप उसकी टेकिंग कैसे करते हो, प्रेजेंटेशन है कि आप कैसे प्रेजेंट करते हो चीज को, आपने एक सीन को आपने कैसे ब्लॉक करना है, ये एक डायरेक्शन के दिमाग, एक डायरेक्टर के दिमाग में रहती है ये पिक्चर
1: जी।
0: और एक्टर ये है, एक्टर डायरेक्टर के हाथ की कठपुतलियां हैं, जैसे वो कहेगा, इसलिए मुझे लगा कि डायरेक्टर बनना चाहिए
1: सही मायने में, उस कठपुतली की वजह से कोई खींच ना ले
0: तो थोड़ा सा ये रहता ना, तो उस वजह से मुझे लगा कि मुझे डायरेक्शन करनी चाहिए। और फिर मैंने किया, बहुत सीखा, पहले मैं असिस्टेंट लगा, फिर चीफ असिस्टेंट हुआ, फिर एसोसिएट डायरेक्टर हुआ, फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्शन की।
1: इस विषय पर हम आगे बात जरूर करेंगे, क्योंकि जितने काम आपने निर्देशक के तौर पर किए हैं उस विषय पर हम बात करेंगे। बट यहां मेरे मन में एक ऐसा प्रश्न आता है, वो ये कि आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब आप कोई भी चीज को निर्देशित करते हैं, तो एक तरीके से जो आपने करना है उस पिक्चर को आप पहले ही मन में देख लेते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और आपकी क्या ऐसी सोच होती है कि मैंने उस तरीके से इस चीज को दर्शाना है स्क्रीन पे, ताकि एक आम दर्शक को वो समझ आए, वो स्टोरी हो, उस कहानी हो, तो इसका मतलब एक आधार क्या है, एक निर्देशन, एक निर्देशक के लिए और जो उसका दर्शक है उसके लिए एक माध्यम क्या होता है?
0: माध्यम तो सर, माध्यम तो ये टीवी है ही है, लेकिन उसमें ये है कि हम क्योंकि मैं बात करूंगा ज्यादा टीवी की, क्योंकि मैंने टीवी में काम ज्यादा किया और थिएटर मैंने इतना किया नहीं, लेकिन इसमें ये रहता है कि आपके दिमाग में जो पिक्चर, आपको कैसे प्रेजेंट करते हो, कैसे आप उसमें अपने करेक्टरों को कैसे ढालते हो, जिसकी वजह से सामने वाला दर्शक जो है ना वो उसमें इन्वॉल्व हो। जब तक सामने वाला व्यूअर्स उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, वो आपकी चीज को क्लिक कर ही नहीं पाओगे आप। अब एक श्रोता है, अब वो उस करेक्टर में जब तक अपने आप को नहीं लेगा ना, तो चीज आपकी हिट तब होती है जब वो अपने आप को इन्वॉल्व करने लगते हैं, हाँ यार मेरे साथ ऐसा हो सकता है, मेरे साथ
1: ऐसा हुआ, हुआ है।
0: वो इन्वॉल्वमेंट जब होती है ना, वो वही चीज, डायरेक्शन यही है कि आप कैसे प्रेजेंट करते हो और लोगों को कैसा लग रहा है उसमें
1: जी,
0: लोगों के दिल को छू गई बात
1: जी,
0: तो वो चीज तो
1: बिल्कुल बढ़ने वाली है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: एक निर्देशक के तौर पर आप अभिनेताओं को, खास करके जो नव युवक अभिनेता है, उनको आप क्या अपनी ओर से संदेश या एक मैसेज, ऐसी बात कहना चाहें जिनसे वो इस प्रोफेशन को आगे आने वाले दिनों में उसको बना सके?
0: देखिए भारत जी, ऐसी बात है कि जो आजकल चल रहा है ना, आजकल क्या है कि एक बंदा थोड़ा सा कहीं काम करता है तो उसको लगता है कि मैं बहुत बड़ा एक्टर बन गया, लेकिन ये हमारी लाइन ऐसी है, कोई भी पूरी तरह से पूरा परिपक्व नहीं हो पाता
1: जी।
0: इसके लिए ये है कि, और क्या चल रहा है कि अभी मैं आपको बताता हूं कि अभी क्या होता है कि पंजाब में या कहीं भी कुछ भी काम किया, थोड़ा सा थिएटर ही कर लिया, उसको लगा कि अब मैं एक्टर हो गया हूं, वो पहले अपनी उड़ान लेता मुंबई में,
1: वो अभी परिपक्व नहीं हुआ है।
0: हुआ एक काम ही किया तो उसको लगता कि मैं एक्टर बन गया, ये क्या इसमें क्या मुश्किल है, तो वो निकलता है मुंबई में और घर वालों को ये इतना बड़े सब्ज बाग दिखा के जाता कि मैं तो अब एक्टर बन जाऊंगा। ऐसा बहुत कुछ हो रहा है, तो वहां मैं आपको बताऊं, वहां कम से कम 2000 बंदा रोज उतरता है एक्टर बनने के लिए
1: जी,
0: तो उसमें 2-4 ही बन पाते हैं, बाकी क्या, बाकी की जिंदगी क्या होती है, वो वापस तो आ नहीं सकते क्योंकि घर पे इतनी बड़ी बड़ी बातें करके गए हैं कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, तो उनकी जिंदगी वहीं पर सिमट जाती है, तो उनको कहीं कैसे काम करने पड़ते हैं। इसलिए मैं आज की जनरेशन को ये कहना चाहता हूं, पहले अपने आप को पहचानो, पहले देखो आप कहां तक पहुंच गए, क्योंकि ये तो इंडस्ट्री ऐसी है, बंदा रोज सीखता है, हर रोज सीखने को मिलता है, क्योंकि हमारी लाइन ही एक ऐसी जो टाइप नहीं है
1: और जो हर दिन बदलती है,
0: टाइप नहीं, रोज नया। अब कोई नौकरी वाला बंदा वो सुबह जाएगा ऑफिस, शाम को आएगा, उसकी टाइप लाइफ है कि यहां सुबह गए, कोई डॉक्टर है उसने पता डॉक्टर शाम को सुबह तक गए ऑपरेशन किया ये किया, हमारी लाइन रोज नहीं है, रोज नया है, नया एडवेंचर है, नया कुछ सीखने को है, हर चीज नई कुछ तो इसलिए मैं वो नई जनरेशन को यही कहना चाहता हूं कि आप पहले अपने आप को पहचानो, क्योंकि अगर आप कर रहे हो तो आपके अंदर का एक इंसान जो है ना, जो अंदर एक बंदा बैठा ना, वो सही गवाही देता है
1: जी,
0: लेकिन आप उसकी ना सुन के सीधा अपनी करने लगते हो ना, तब बंदा फंसता है
1: जी।
0: बाकी ये जो है
1: तकदीर, जो है
0: तकदीर है, वो बहुत काम करती है। आपकी तकदीर ने अगर आपको वहां लेके जाना तो वो तो जरूर ले जाएगी, लेकिन अपने आप को पहचानने के बाद ही उस जगह चलो, करो मेहनत करो, जितनी मेहनत करोगे वो परमात्मा जरूर साथ देता है जी। वो उसको, उसकी कैलकुलेशन इतनी जबरदस्त है ना, हम लोग सोच नहीं सकते कि वो क्या कैलकुलेट करके बैठा है, आपको आपको कहां से कहां ले जाना है उसने, उसको पता है।
1: पर जो हमें पहले करना काम अपना है, सीखना है, वो उसको पूरी तरह से सीखें, फिर आपकी मन गवाही देगा कि अब मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं, आगे कदम उठाने के लिए तैयार हूं, तब ही कदम उठाया जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, पूरा उसमें आप पूरी तरह आओ तो सही ना उसमें।
1: आपके साथ बात करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है सर। और आइए हम थोड़ा सा डाइवर्शन लेते हैं। जैसे आप अभिनेता है, जैसे आप निर्देशक है, आपने बहुत सारा काम किया है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप संगीत के साथ ना जुड़े हों। तो मैं चाहता हूं कि आपकी कोई पसंद का कोई गाना जो हम अपने श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे, और आप कृपया उसके बारे में बताएं, कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं।
0: नहीं नहीं जरूर, क्योंकि म्यूजिक जो है ना वो तो एक मेन फैक्टर है हमारी जिंदगी में भी और हमारी इंडस्ट्री में भी। तो ऐसे है, गाने तो बहुत है, लेकिन एक गाना जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है।
1: तो आइए श्रोताओं, आपको विशाल सर का ये पसंदीदा गाना सुनाते हैं, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। सब कुछ

0: मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी, लेके आया हूं कार्यक्रम परिचर्चा। आज बात कर रहे हैं श्री विशाल शर्मा जी के साथ, और जिनको विशाल डार्ली के नाम से भी जाना जाता है। सर, आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने अलग अलग राज्यों में टीवी के लिए टीवी सीरियल्स का निर्माण किया है एक निर्देशक के तौर पर, कैसे याद करते हैं उस समय को, और क्या कुछ खास लोगों की याद भी आती है?
1: हाँ, ये जब मैं डायरेक्शन में आया, कभी सबसे पहले तो मैंने दिल्ली दूरदर्शन में मैं एज ए प्रोडक्शन असिस्टेंट शुरू किया थी मैनेजर
0: जी,
1: वहाँ कुछ प्रोग्राम्स किए। फिर मैं एक प्रोग्राम आता था हार्ट टू हार्ट, वो एक डिस्कशन प्रोग्राम था, वो
0: मतलब दिल से दिल तक।
1: हाँ, वो सुरेंद्र साहनी जी ने किया था
0: जी,
1: तब मैं प्रोडक्शन असिस्टेंट था। उसके बाद फिर ऐसे ही जर्नी चलती रही, कई प्रोग्राम बनाए, तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है, वो दिन इसलिए याद आता है क्योंकि एज ए प्रोडक्शन असिस्टेंट सबसे पहली बार मेरा कैप्शन गया था,
0: जो स्क्रीन पे आपका नाम
1: आया था जी। तो इसलिए वो चीज मैं कभी नहीं भूलता कि जब पहली बार मेरा नाम आया था। फिर मैंने फीचर फिल्में की पंजाबी
0: जी,
1: तो उसमें मैं चीफ असिस्टेंट बना। एक थी फिल्म पुर्जा पुर्जा कटमरे, उसमें गुग्गू गिल, उपासना सिंह, दीप ढिल्लो, ये सारे थे। फिर एक वो डायरेक्ट की थी सुरेंद्र साहनी जी ने। फिर एक फिल्म की थी दिलदारा, उसमें मैं एसोसिएट था, तो उसमें कुलभूषण खरबंदा, तनुजा जी, सईद जाफरी, ये सब कलाकार थे। तो बड़ा अच्छा लगा काम करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मेरे गुरु थे, अब तो इस दुनिया में नहीं है, सुरेंद्र साहनी जी, उन्होंने बहुत मुझे सिखाया। तो ऐसे सीखते, क्योंकि मुझे इसलिए याद है क्योंकि तब डिजिटल नहीं था, फिल्म पे काम होता था
0: जी,
1: तब वो नेगेटिव पे काम होता था, मैगजीन पे, उसके बाद उसको पॉजिटिव होता है, वो बड़ा लंबा प्रोसेस था, लेकिन उससे बंदे को सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मैंने वहां से बहुत कुछ सीखा, मुझे याद है कि, और एक वो दिन नहीं कभी मैं बोलता जब मैं पहली बार मैंने कैमरे के पीछे खड़े होकर पहली बार एक्शन बोला था, वो बड़ा याद आता वो दिन, क्योंकि जब आप इंडिपेंडेंट डायरेक्शन दे रहे हो और पहली बार आपके मुंह से एक्शन निकलता है, डायरेक्टर के लिए तो सबसे बड़ी बात,
0: बहुत बड़ी बात होती है
1: कैमरा रोल और एक्शन जो है ना, वो जब पहली बार मैंने एक्शन बोला, तो वो एक NRI सभा की एक फिल्म थी
0: जी,
1: इसका नाम था मिट्टी की महक, मिट्टी दी महक, उसमें हमने कुछ ड्रामा किया था, ड्रामा तो उसमें कुछ आर्टिस्ट लिए थे, तब मैंने पहली बार एक्शन बोला था। तो वो हमारे हैं पंजाब के एक बहुत बड़े राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, सतनाम चाना जी,
0: जी
1: वो राइटर भी है बहुत बड़े, उन्होंने वो फिल्म लिखी थी। फिर ऐसे करते करते मैंने एक सोनालिका पर, सोनालिका ट्रैक्टर्स वालों के लिए हाँ। फिल्म बनाई थी
0: जी।
1: ऐसे बहुत काम किए, फिर वहां से मेरी जर्नी एज ए डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुरू हुई। तो कॉमेडी बनाई, सीरियल बनाए मैंने, काशीर दूरदर्शन के लिए
0: जी।
1: काशीर के लिए, शिमला दूरदर्शन के लिए, जालंधर के लिए, कई जगह के लिए फिर मैंने काम किया। तो ऐसे करते करते फिर एक हमारे पंजाब में आता छनकाटा
0: जी,
1: छनकाटा 2004 और 2005 वो मेरे डायरेक्ट किए हुए हैं
0: जी,
1: उसमें जसविंदर भल्ला जी जो चाचा चतुर सिंह के नाम से बड़े मशहूर
0: हुए,
1: अब तो वो फिल्मों में, उनके पास टाइम ही नहीं, फिल्में इतनी कर रहे हैं
0: जी,
1: तो उनके साथ भी काम किया, बड़ा अच्छा लगा, वो मैंने इंडिपेंडेंट डायरेक्शन दी। तो वो चीजें मैं कभी नहीं भूलता, मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो टाइम, अब भी है, अब उससे और आगे बढ़ रहे हैं।
0: आपने सर अभी जसविंदर भल्ला जी का नाम लिया, मेरे बहुत ही पसंदीदा कलाकार है वो, आप उनके बारे में जो उनकी खासियत है, विशाल सर तुसी पंजाबी च दस सकते हो उनकी खासियत जो है वो क्या है?
1: उनकी खासियत सबसे बड़ी ये है कि वो एक तो वो खुद लिखते हैं
0: जी,
1: सबसे बड़ी बात, कॉमेडी लिखना
0: आसान नहीं होता
1: जी, और वो खुद लिखते हैं, और उनको ना आप उनके साथ बैठे बात भी करोगे ना, उनको बातें ऐसे निकलती हैं उनके अंदर से, और कॉमेडी निकलती है उनके अंदर से, क्योंकि हम तो रहते थे, हम तो इकट्ठे 10-10, 15-15 दिन स्क्रिप्ट पे काम करना, उन्होंने लिखना, फिर उन्होंने सुनानी, 10 बार चेंज करनी, लेकिन ऐसा था कि जब तक हम सेट पे नहीं पहुंचते ना, जब तक हम फ्लोर पे नहीं पहुंचे शूट के लिए, तब तक भी स्क्रिप्ट चेंज होती रहती थी, क्योंकि मन में नया आइडिया आ गया उन्होंने उसी टाइम। ये उनकी बहुत खासियत है कि वो स्क्रिप्ट पे बहुत वर्क करते हैं और लिखते बहुत अच्छा है।
0: क्या हम ये माने कि जब एक चीज आप तैयार करते हैं और जब वो स्क्रीन पे आता है एक दर्शक के लिए, एक क्षण में वो सीन निकल जाता है, तो कितनी मेहनत उसके पीछे होती है और कितनी बार आप डिस्कस करते हैं, मैं ये जानना चाहता हूं, ताकि जितने भी हमारे इस समय इस प्रोग्राम के श्रोता है, जब वो स्क्रीन पर आपको और आपके काम को देखते हैं तो उनको ये अंदाजा हो कि उसके पीछे कितनी मेहनत होती है।
1: और बहुत मेहनत होती है और बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं साथ में, हर एक की मेहनत है। देखो ये हमारी ये जो काम है ना, ये जो हम फिल्म बनाते हैं या कुछ भी, ये एक टीम वर्क है। अकेला बंदा कुछ नहीं, चलो एक डायरेक्टर है उसको पता क्या बनाना है, लेकिन एक पूरी टीम, कैमरा मैन, फिर लाइट मैन, स्पॉट बॉय, हर एक का अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है और उससे फिल्म बनती है। और ये है कि बहुत मेहनत लगती है, ऐसा नहीं होता कि आप तो एक क्षण में देख के उसको डिसाइड कर ले, लेकिन जिनकी मेहनत लगी होती है उनको पता है कि कितनी मेहनत लगी है इसमें।
0: और जब आपने कोई चीज अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से एक बार फाइनल चीज बना दी, जब वो तैयार होकर स्क्रीन पे आती है, क्या उस डायरेक्टर को लगता है कि इसमें इससे और अच्छा किया जा सकता था?
1: हाँ, कई बार हो भी जाता है, कई बार ऐसा होता है, लेकिन कई बार होता ना कि आपको बाद में पता चलता कि इसको हम ये कर सकते थे, लेकिन फिर भी जहां तक, ऐसा कभी ज्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन एक आध बार लगा है कि इसको ऐसा कर सकते थे। लेकिन कई बार क्या होता है भारत जी, वो क्या है, कई बार आपकी कुछ लिमिटेशंस ना आपको वो चीजें नहीं करने देती
0: है।
1: लिमिटेशन जो आती है ना कई चीजों में।
0: ठीक है, जहां तक हमने आज तक इस प्रोग्राम में बात की है, तो या तो वो एक्टर रहे या उन्होंने अलग अलग जो किरदार है वो निभाए हैं, आज हम एक निर्देशक से बात कर रहे हैं। एक नया ही आयाम मुझे सुनने को मिला और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक है उनको भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, इसके साथ जुड़ा हुआ एक और प्रश्न करता हूं आपसे।
1: जी जी,
0: आप जब अभिनय करते हैं, क्या आपके अंदर का निर्देशक बीच में आता है?
1: हाँ, कई बार कोशिश करता है आने की, लेकिन उसको आने नहीं देना।
0: आने नहीं देते, क्योंकि उस समय जैसे आपने कहा निर्देशकशिप
1: चक्कर क्या होता है सर, ऐसे है कि जब मैं खुद डायरेक्ट कर रहा हूं कोई चीज
0: जी,
1: तो मुझे पता कि मैंने उसको क्या दिखाना है, मेरे दिमाग में पिक्चर है। अब जो मेरे दिमाग में पिक्चर है वो जरूरी नहीं कि आपके दिमाग में वो पिक्चर हो
0: जी।
1: मैंने कुछ सोचा है, जब मैं अपने काम जब करता हूं तो मुझे पता कि मुझे क्या दिखाना है, कैसे करना। अब मैं एज ए एक्टर जा रहा हूं तो मेरे डायरेक्टर को पता है उसने क्या दिखाना है, इसलिए वहां पे कोई निर्देशक नहीं आड़े आना चाहिए।
0: वो उस समय वो कठपुतली होती है जिसकी डोरी
1: बिल्कुल
0: निर्देशक पे होती है, जब चाहे वो उसको खींच सके।
1: मैं तो सबको यही कहता हूं कि अगर जो मुझे लगता है कि जब भी आप किसी की डायरेक्शन में काम कर रहे हो तो आपको उसके हिसाब से ही चलना चाहिए, जैसे वो चाहते हैं
0: जी,
1: क्योंकि उनको पता है वो उन्होंने क्या आगे भेजना है
0: जी,
1: तो इसलिए आपको उनके हिसाब से ही चलना चाहिए, अपनी नहीं बीच में डालनी चाहिए कि ऐसे नहीं ऐसे।
0: मैं सभी श्रोताओं को ये कहना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम में एक बहुत बड़ी सीख है, अगर हम कोई भी काम करना चाहते हैं और अगर हम अभिनेता के तौर पर काम करते हैं, जो उस समय वो निर्देशक, उस समय का निर्देशक जो भी आपको करने के लिए कहे, आपको उसमें अपना 100% देना चाहिए।
1: नहीं, वैसे मैं भारत जी आपसे पूछता हूँ एक चीज, आप भी प्ले करते हो, डायरेक्ट भी करते हो
0: जी,
1: तो जब आप प्ले करते हो तो आपको कैसा लगे कोई बीच में आके आपको बहुत बोले नहीं सर ऐसे नहीं ऐसे करो?
0: सर मैं आपसे अपने दिल की बात पूछी और जो मेरे मन में सवालों के जवाब थे वही जवाब आपने दिए। हाँ, इतना जरूर हम करते हैं, अगर कोई हमारा कलाकार ही कहे कि सर आपने कहा इसको ऐसे करें, ऐसे ना करके हम इसको ऐसे करें, अगर वो मुझे अच्छा लगता है
1: तो
0: मैं साथ ही स्वीकृति देता हूं कि हमें ऐसा ही करना चाहिए।
1: वो करना चाहिए, वो एक सुजेशन अलग चीज है, लेकिन थोपना अलग बात होती है।
0: हाँ नहीं नहीं, अगर तो हम कोई चीज निर्देशन करते हैं किसी चीज का, हम यहाँ रेडियो में प्रोग्रामिंग करते हैं और अगर हमारा जो साथी वो कोई ऐसी बात कर देता है या वो किसी और तरीके से बात कर देता है तो हम उसको वहीं कट करके उसको दोबारा से करने की कोशिश करते हैं।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: कि वो भी निर्देशक नहीं हो सकता है जो दूसरे के कहने पे निर्देशन करे, तो ऐसा भी नहीं होता है। अगर हम निर्देशन करते हैं तो हमारी एक टाइमलाइन है, उस टाइमलाइन के आगे पीछे हम
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: मैं विशाल सर आपसे अपने मन के जो सवाल आते हैं उनके जवाब आपके थ्रू ढूंढ रहा हूं,
1: क्योंकि वो चक्कर क्या होता है सर, जैसे जो प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट उस डायरेक्टर के लिए उसका एक बेबी है
0: जी,
1: उसको कैसे करना है क्या करना उसके दिमाग में है, तो इसलिए कोई भी डायरेक्टर ये नहीं चाहेगा कि मैं अपना जो बेबी है या जो मेरा प्रोजेक्ट है उसको, वो तो चाहेगा जितना अच्छा हो सके। मैं तो यही कहूंगा कि आप जिस भी डायरेक्टर के अंडर काम कर रहे हो उसकी स्वीकृति से ही सब काम करो,
0: सब काम करो। यहाँ पर विशाल सर हमारे पास एक और गाने की गुंजाइश है और हमारे श्रोता इंतजार कर रहे हैं कि विशाल सर की अगली जो मनपसंद गीत वो कौन सा होगा, ताकि हम भी थोड़ा सा ब्रेक लें और हम अपने श्रोताओं का भी मनोरंजन करें।
1: तो सर वो गाना तो मेरा ख्याल सबका ही चाहने वाला गाना है, क्योंकि वो हम आर्टिस्टों के लिए ही बना है वो गाना।
0: जी,
1: तो जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना का।
0: आइए श्रोताओं, सुनाते हैं आपको राज कपूर जी का गाना जीना यहाँ मरना यहाँ, और हम अभी वापस आते हैं, आप बने रहिए।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम परिचर्चा एपिसोड 3। हमारे आज के मेहमान थे विशाल शर्मा डारली, एडिटिंग व रिकॉर्डिंग दीपक कश्यप, प्रस्तुतकर्ता व निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत। तोशु बोजान FM 90.0 रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हूं। बोजान रोजू पनीन पसंदीद बर्थ।
1: तोशु बोजान FM 90.0 रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हूं। بوزان روزیو پنن پسندید بغت.

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

90.0 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ताई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का आपके जीवन का प्रवाह। आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं एक टाइटल सॉन्ग पलायन यानी विस्थापन। ये गीत वो दर्द बयान करता है जो हर कश्मीरी पंडित का है, मेरा है, जिस कारण हम सबको अपने घर जमीन छोड़ के आना पड़ा था। आए तो कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए थे, पर अब ये विस्थापन यानी पलायन 35 वर्ष पूरे कर चुका है और 36वां वर्ष शुरू हो गया है। आगे कितने साल होंगे पता नहीं। इस टाइटल सॉन्ग को आपके लिए लाए हैं फिल्म इंडस्ट्री में 75 से ज्यादा फिल्मों में चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम करने वाले आदरणीय गोपी सप्रू जी। इस टाइटल सॉन्ग पलायन को संगीत दिया है, लिखा है और निर्देशित किया है इसी महान कलाकार ने, जिनको हम गोपी सप्रू जी के नाम से जानते हैं। आइए सुनते हैं ये टाइटल सॉन्ग पलायन और महसूस करते हैं वो दर्द जो हर एक शब्द में कहा गया है, लिखा गया है और तैयार किया गया है।

0: अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: यो सा FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ के प्रसारण रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
4: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: जी हाँ, आज सोमवार है और समय 7:05 हो चुके हैं। आप जहाँ भी हैं अपने रेडियो सेट के पास आ जाइए और अपनी शारीरिक समस्याओं के निदान के लिए सुनिए हमारा कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
6: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे डॉक्टर पुष्पा रैना से की गई बातचीत। आपकी बातचीत का विषय है गर्भवती महिलाओं को किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए।
7: डॉक्टर पुष्पा रैना हमारे साथ हैं। पुष्पा जी, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस कार्यक्रम में प्रसव के दौरान और प्रसव के बाद किस तरह का एहतियात बरतना पड़ता है आम महिला को।
8: कोई भी शादीशुदा औरत जिसको बच्चा होता है उसको पहले डायग्नोस करना पड़ता है कि भाई वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो वो कैसे पता चलेगा उसको वो प्रेग्नेंट है या नहीं है? जब उसको मंथली पीरियड बंद हो जाता है या उल्टी का मन करने लगता है तो उसको पहले किसी डॉक्टर के पास सलाह लेने चला जाना चाहिए कि कन्फर्म करने के लिए वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। डॉक्टर को प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए पहले तो प्रेगनेंसी टेस्ट करना पड़ता है। अर्लीस्ट प्रेगनेंसी टेस्ट से ही पता चल सकता है कि औरत प्रेग्नेंट है या नहीं है
7: जी।
8: उसके बाद 10-15 दिन के बाद प्रेगनेंसी के सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे मन खराब होना, उल्टी करना, सुस्ती जैसी हो जाती है। तो ये तो सिम्टम्स होते हैं
7: जी।
8: और टेस्ट करने से पता चल जाता है कि औरत प्रेग्नेंट है या नहीं है
7: जी।
8: तो अगर औरत प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर के पास चली जाती है फिर डॉक्टर उसको बताता है कि क्या एहतियात प्रेगनेंसी में करनी पड़ती है
7: जी।
8: हम प्रेगनेंसी को 9 महीने होते हैं तो उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं
7: जी।
8: पहला चेकअप, हम बोलते हैं कि चेकअप करवाने के लिए औरत को कम से कम 9 महीने में 3 बार डॉक्टर के पास जरूरी जाना चाहिए। पहले 3 महीनों में वो डॉक्टर के पास किस लिए जाती है? एक तो अपना डायग्नोसिस करने के लिए जाती है, दूसरा फिर डॉक्टर उसको बताता है कि क्या क्या एहतियात करनी है उसको। एक तो उसको डॉक्टर डाइट के लिए बताता है कि डाइट कैसी लेनी है।
7: ये आप पहले 3 महीनों की
8: पहले 3 महीनों की बात कर रहे हैं।
7: ये बड़े क्रूशियल होते हैं।
8: पहले 3 महीने क्रूशियल होते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी डेवलप हो रही होती है। अगर प्रॉपर एहतियात नहीं लिया जाए तो वो प्रेगनेंसी गिरने का डर, जिसको अबॉर्शन करते हैं, तो अबॉर्शन का डर होता है
7: जी।
8: तो अगर वो डॉक्टर के पास जाएगी तो वो उसको एहतियात बता देगा, कितनी देर रेस्ट करना, काम कैसे, कोई हैवी काम नहीं करना है, ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं करना है, डाइट कैसी लेनी है। और पहले चेकअप में पता चल जाता है कि औरत का खून कम तो नहीं है। कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं जिससे पता चलता है खून कम तो नहीं है। एक तो हमें जनरल एग्जामिनेशन से पता चल जाता है, अगर खून कम हो तो रंग पीला पड़ा होता है, नाखून जो होते हैं वो भी चपटे जैसे हुए होते हैं, जीभ का रंग पीला होता है। फिर खून टेस्ट करने पे, जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, उसे पता चलता है कि औरत का खून कितना है, ग्रुप कौन सा है। और कुछ बीमारियां होती हैं जो प्रेगनेंसी में डेंजरस होती हैं।
7: किस किस तरह की बीमारियां?
8: जैसे जॉन्डिस, होता है,
7: पीलिया, पीलिया
8: पीलिया की बीमारी होती है, या अर्ली प्रेगनेंसी में कुछ ऐसी सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज होती हैं, तो अगर वो प्रेग्नेंट औरत को होंगी तो एक तो इफेक्ट औरत को भी करती है, उसकी हेल्थ को भी,
7: और जो बच्चा, और
8: जो बच्चा पेट में पल रहा होता है उसको भी इफेक्ट करती है। कई बार उन बीमारियों से अबॉर्शन हो जाता है, अगर अबॉर्शन का समय निकल जाए, अब नॉर्मल बेबीज होते हैं या डेड बेबी पैदा होते हैं, तो ये टेस्ट हम पहले ही 3 महीनों में कर लेते हैं।
7: यानी आप ये मान के चलते हैं कि पहले जो 3 महीने होते हैं बड़े क्रूशल होते हैं,
8: बड़े क्रूशल होते हैं। एक तो डायग्नोसिस, दूसरा एहतियात की अबॉर्शन ना हो जाए, फिर मदर को कोई बीमारी ना हो, मदर को बच्चा पैदा करने के लिए भाई उतना खून बराबर होना चाहिए, फिर खून बराबर करने के लिए डाइट कैसी लेनी है, उसके बाद फिर यूरिन में कोई इन्फेक्शन नहीं हो, और यूरिन में इन्फेक्शन होगी तो उससे भी अबॉर्शन होने का डर रहता है। तो हम कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं, जैसे खून कितना है, ग्रुप क्या है, कोई सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो नहीं है, जैसे आजकल नई बीमारी है एड्स
7: जी,
8: जिसका तो प्रोफाइलेक्सिस है, अगर बीमारी हो जाए तो उसका इलाज कोई नहीं है।
7: ये जब खून टेस्ट होता है तो वहाँ पता चलता है,
8: आजकल ये लेटेस्ट टेस्ट ये भी करते हैं, HIV टेस्ट बोलते हैं, अर्ली प्रेगनेंसी में कर लेते हैं, HIV कर लेते हैं, जॉन्डिस के लिए हेपेटाइटिस का टेस्ट कर लेते हैं, ये बेसिक टेस्ट होते हैं।
7: अच्छा पुष्पा जी, इस दौरान क्या कोई खास मेडिसिन लेनी पड़ती है या आहार किस तरह का लेना पड़ता है ये 3 महीने के दौरान?
8: मेडिसिन पहले 3 महीनों में उतनी मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है, जैसे किसी को उल्टियां आती हैं, मन खराब होता है, तो हम पहले डाइट के लिए बताते हैं पेशेंट को, हल्की फुल्की गुजा लेगा, फ्राइड चीजें नहीं लेगा, जो पचती हैं जैसे जूस है, ठंडा दूध है, दही है, ये वाली चीजें ले सकते हैं। अगर फिर भी उल्टियां बंद नहीं होती हैं तो फिर कुछ मेडिसन्स होती हैं हम वो देते हैं पेशेंट को, और उससे भी वोमिटिंग कंट्रोल नहीं होती है, कई बार ड्रिप देने की।
7: ये कहाँ तक सच है कि कहते हैं कि 3 महीनों के दौरान कोई मेडिसिन ली नहीं जाती है, दी नहीं जाती है?
8: नहीं, ये तो सच नहीं है। कोई भी डिजीज हो और कोई पेशेंट को कोई बीमारी है, जैसे यूरिन में कोई इन्फेक्शन है, कोई फीवर है, तो उसके लिए कुछ मेडिसिन होती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान ही दी जाती हैं, जो कि भी प्रेगनेंसी को इफेक्ट नहीं करती,
7: कोई इसका असर बच्चे पे
8: मेडिसिन देते हैं, कोई मेडिसिन ऐसी होती हैं जो हार्मफुल होती हैं बच्चे के लिए, वो मेडिसिन कंट्रा इंडिकेटेड होती हैं। तो अगर पेशेंट गायनेकोलॉजिस्ट के पास चेकअप करवाने जाएगा, उनको पता होता है कौन सी मेडिसिन देनी है, तो फिर वही मेडिसिन देते हैं।
7: यहाँ हम आपसे ये जरूरी जानना चाहेंगे फिर से दोबारा कि 3 महीनों के अंदर अंदर एक तो एहतियात बरतने की बहुत जरूरत होती है, आपने कहा कि जिस तरह के टेस्ट होते हैं वो करवाने चाहिए, खासतौर पे जो ब्लड टेस्ट की बात,
8: ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, ये बेसिक टेस्ट है, ये करवाने चाहिए।
7: पुष्पा जी, हम यहाँ अपनी बातचीत जारी रखेंगे लेकिन यहाँ एक छोटा सा विराम लेंगे। आपकी पसंद का कोई गाना जो आप अपने सुनने वालों तक पहुंचाना चाहेंगे?
8: हमराज
7: फिल्म का गाना, तुम अगर साथ देने का वादा करो, बहुत ही प्यारा नगमा चुना है आपने महेंद्र कपूर की आवाज में। आपकी पसंद का गाना हम अपने सुनने वालों तक पहुंचा।

0: पुष्पा रैना हमारे साथ हैं। पुष्पा जी, अब जब 3 महीने की बात की है आपने कि 3 महीनों में किस तरह का एहतियात बरतना है, उसके बाद जो अगले 3 महीने होते हैं वो भी क्या क्रूशल होते हैं?
1: वो भी क्रूशल ही होते हैं, क्योंकि हम पहले तो असेस कर लेते हैं कि इस पेशेंट को क्या डाइट देनी है, और हमें उस पहली विजिट में ही पेशेंट को बता देते हैं नेक्स्ट विजिट क्यों ज़रूरी है, नेक्स्ट विजिट पर क्यों आना है। एक तो हम टैटनस ऐसी बीमारी है जिसको हम इंजेक्शन लगा के, 2 इंजेक्शन प्रेगनेंसी के दौरान देके टैटनस से औरत को और उसके होने वाले बच्चे को बचा सकते हैं, तो हम उसकी भी हिदायत देते हैं।

0: लेनी है उनको। अगर वो एक कटोरी दाल खाती हैं तो उनको प्रोटीन ज़्यादा लेनी है, तो दो कटोरी दाल ले लें, दूध एक्स्ट्रा ले लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जिसमें आयरन ज़्यादा होता है, प्रोटीन मतलब मिनरल ज़्यादा होते हैं वो डाइट लें। जो नॉन वेजिटेरियन औरतें होती हैं उनके लिए मीट ले लें, मछली ले लें, वेजिटेरियन पनीर ले लें, सोयाबीन ले लें, काले चने ले लें, साबत मूंगी, धुली मूंगी। काले चने और साबुत मूंगी को अगर वो भिगो के रखें तो उसमें से अंगूर आ जाते हैं, उसमें विटामिन सी मिलती है, तो खून बनाने के लिए ये चीज़ें ज़रूरत होती हैं। तो आयरन सप्लीमेंट के साथ साथ हम पेशेंट को डाइट के बारे में भी बताते हैं, और फिर ब्लड प्रेशर का चेकअप करवाना ज़रूरी होता है
1: जी
0: हर विज़िट पे,
1: जी
0: क्योंकि ब्लड प्रेशर ऐसी चीज़ है जो प्रेगनेंसी में, अगर प्रेगनेंसी से पहले है तो प्रेगनेंसी में ये बढ़ जाता है। तो कई बार क्या होता है, उनको पेशेंट को दौरे पड़ने का डर होता है, तो ये दौरे 6 महीने के बाद पड़ते हैं। तो अब जब सेकंड विजिट पर पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसको ऑलरेडी इनवाइट कर लेते हैं थर्ड विजिट के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो लास्ट के 3 महीनों में होती हैं। जैसे अभी हमें पता चलता है बच्चा सीधा है या उल्टा है, वो लास्ट के 3 महीनों में पता चलता है। फिर ब्लड प्रेशर, अगर किसी का पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसमें पहले पेशेंट को सिर दर्द होती है, पाँव हाथ पाँव में सूजन होती है, मुंह पर सूजन होती है, तो उसके बाद पेशेंट को अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो दौरे पड़ने का डर होता है।
1: ये तीन से
0: तो
1: और 3 और 6 महीने के, ये
0: लास्ट के 3 महीने में,
1: लास्ट के 3 महीने।
0: तो हम दूसरे 3 महीनों में, जैसे पहले 3 महीने में हम प्रेगनेंसी डायग्नोज करते हैं, टेस्ट करते हैं, दूसरे तीन महीनों में, जैसे 3 से 6 महीनों में
1: जी
0: टैटनेस इम्यूनाइजेशन करते हैं, उनको आयरन टेबलेट देते हैं, डाइट के बारे में बताते हैं, रेस्ट के लिए बताते हैं कितना रेस्ट करना है। किसी का स्टैंडिंग प्रोफेशन है तो हम बोलते हैं कि ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना है।
1: अच्छा, ये जो गांव में महिलाएं होती हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? ये जो 3 से 6 के बीच में जो,
0: 3 से 6 महीने के बीच में भी हम उनको बोलते हैं, जैसे वो काम शाम कर लेती हैं
1: यानी
0: तो जब
1: अगर
0: बाकी फ्री टाइम
1: वो
0: होता है तो उसमें
1: अस्पताल
0: दो
1: तक
0: घंटे
1: ना
0: रेस्ट
1: पहुंच,
0: करें।
1: अगर वो डॉक्टर से ना मिलें,
0: अगर वो
1: अस्पताल तक
0: डॉक्टर
1: नहीं पहुंच
0: से,
1: पाएं।
0: अगर वो हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाए तो आप गवर्नमेंट ने यहाँ स्टार्ट किया है नेशनल हेल्थ रूरल हेल्थ प्रोग्राम, उसमें क्या है जगह जगह उन्होंने अब ट्रेनिंग सेंटर खोले हैं, जिसमें एक ANM होती है, स्टाफ नर्स होती है ट्रेंड, मेडिकल ऑफिसर होता है, तो वो उनको सब एहतियात के बारे में, ब्लड प्रेशर चेकअप करना, खून टेस्ट करना,
1: कोई घरेलू इस तरह
0: और
1: के नुस्खे इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं?
0: घरेलू नुस्खे डाइट के लिए ही है। जैसे अब आयरन है तो अब किस डाइट में वो ज़्यादा होता है, जैसे गुड़ में ज़्यादा होता है आयरन, जो साग होता है घर में, अब
1: जी
0: हरे पत्ते वाली सब्जी तो बहुत होती है, तो वो यूज़ कर सकती हैं उसके लिए। तो दालें तो अब हर आदमी दाल खाता है, और जैसे मूंगी की दाल हो गई, काले चने हो गए, इनमें प्रोटीन ज़्यादा होती है तो ये ज़्यादा खा सकते हैं। जैसे गज्जक होती है गाँव में, जैसे
1: जी
0: अब उसमें गुड़ और चना दोनों मिक्स
1: बिल्कुल
0: होता है,
1: बिल्कुल
0: एक में आयरन होता है तो चढ़े में प्रोटीन होगी। जैसे आपने आशा वर्कर ली हैं,
1: जी
0: आशा वर्कर ली हैं, उनको गवर्नमेंट 600 रुपया देती है, वो अपने नज़दीक के ही घरों में पता करती हैं कौन औरत प्रेग्नेंट है, उसको वो रजिस्ट्रेशन कर लेती हैं, वो खुद उनको डॉक्टर के पास पहुँच जाती हैं,
1: पुष्पा जी,
0: मिनिमम 3 विजिट करवाती हैं उनको।
1: पुष्पा जी ये बताइए हमें कि जो आखिरी 3 महीने होते हैं यानी 6 से 9 महीने के दौरान, इसमें किस तरह के एहतियात बरतना पड़ता है?
0: जो लास्ट के 3 महीने
1: ये
0: वो
1: भी मेरे
0: है
1: ख्याल में क्रुशल
0: पहले
1: होते हैं
0: में,
1: क्या?
0: ये भी क्रूशियल होते हैं पहले, जैसे जैसे जो एहतियात पहले 3 महीनों में है, जैसे रेस्ट की एहतियात है, डाइट की है, जो आयरन टेबलेट लेनी है, ब्लड टेस्ट कराना है कि खून काम तो नहीं हो रहा है, फिर ब्लड प्रेशर चेकअप करवाना है, कोई और बीमारी तो नहीं है, ये भी चेकअप होता है लास्ट के 3 महीनों में। उसके अलावा बच्चा सीधा है, उल्टा है, एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, टेढ़ा है, इसकी डिलीवरी घर में हो सकती है या नज़दीक के कहीं हेल्थ सेंटर में हो सकती है या किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो सकती है,
1: अच्छा, अगर
0: ये
1: महिला
0: भी डिसाइड करना पड़ता है तीन
1: अगर
0: महीनों में।
1: अगर महिला को पता चलता है कि मेरे 2 बच्चे अंदर पल रहे हैं, इस तरह की बातें, उस कोई किस
0: कई
1: कोई संकेत
0: बार
1: मिलता है क्या?
0: हाँ मिल जाता है, जैसे अगर पहले 3 महीने होते हैं उनको उल्टियाँ ज़्यादा आती हैं, फिर क्या होता है कि जितना पेशेंट का टाइम होता है उससे पेट उनका बढ़ रहा होता है, वो बोलती है मेरे को 3 महीने पर पेट बहुत बड़ा है, तो उनको भी पता चलता है कि हमारा पेट बढ़ रहा है, पर हमें डॉक्टर के पास अगर वो जाएंगी वो कंफर्म करता है कि भाई ये 2 बच्चों की वजह से है या रसोली की वजह से तो नहीं बढ़ रहा है, या कई बार पेट में एबनॉर्मलिटी होती है, पेट में पानी बढ़ रहा होता है, बच्चा कोई एबनॉर्मल होता है, कई बच्चों को सिर नहीं होता है या सिर में पानी होता है या गुर्दे खराब होते हैं, उस सूरत में क्या होता है कि जितना टाइम होता है उससे पेट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो डॉक्टर के पास जाती हैं तो कन्फर्मेशन हो जाती है उनकी
1: यानी
0: कि
1: आपने
0: दो
1: बताया
0: बच्चे
1: कि
0: हैं या कोई और प्रॉब्लम है।
1: यानी ये आपने बताया कि 9 महीने जो लास्ट के 6 और

0: तीन महीने के बीच में समय होता है, ये भी क्रूशियल होता है,
1: ये भी क्रूशियल होता है,
0: तो एहतियात बरतने की बहुत जरूरत होती है और डॉक्टर से मिलना है।
1: हाँ। और उसको डिसाइड करना होता है 3 महीनों में कि वो उसको डिलीवरी के लिए घर में बैठना है, किसी नर्स से डिलीवरी करानी है, डॉक्टर से करानी है, या कहीं ऑपरेशन की ज़रूरत है तो उसको जिस हॉस्पिटल में जाना है, क्योंकि अगर वो उस टाइम पर पहुंचेगी वो लेट हो जाएगा उसको, जब अगर उसको डिलीवरी घर में नहीं होगी और उसको पता नहीं होगा कि बच्चा उल्टा है, सीधा है, टेढ़ा है, 2 बच्चे हैं, तो वो घर में ट्राई करती रहेगी, तो फिर जब पहुंचेगी तो माँ की और बच्चे की जान दोनों को खतरा होता है।
0: डॉक्टर पुष्पा, यहाँ पे आपकी पसंद का एक और गाना हम सुनना चाहेंगे और अपने सुनने वालों तक पहुंचाना चाहेंगे।
1: ये मैं अपनी बहनों को दुलारी पसंद
0: दुलारी
1: करूंगी।
0: फिल्म से गाना रफी साहब की आवाज में है, बड़ा प्यारा गाना है, सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगी।
1: शायद बहनों को भी ये पसंद आए।
0: जी बिल्कुल।

0: डॉक्टर पुष्परेना, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अब जब बच्चा पैदा होता है तो किस तरह की एहतियात करनी पड़ती है, खासतौर पे बच्चे के लिए और माँ के लिए, दोनों के लिए?
1: जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा उसकी पहले सबसे पहले उसकी सांस का ध्यान रखना पड़ता है। जब हम डिलीवरी करते हैं तो हम बोलते हैं कि बच्चा एकदम सांस लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे की मौत के तीन काज होते हैं। एक तो सांस ना लेने की वजह से इमीडिएटली ऑक्सीजन ना जाए, उसे बच्चा मरता है। दूसरा है कि टेम्परेचर कम होने से, जैसे सर्दियां हैं तो अगर हम बच्चे को गर्म नहीं रखें उसकी वजह से बच्चा मर जाता है, हाइपोथर्मिया बोलते हैं, टेम्परेचर कम होने से बच्चा मरता है। तीसरा, हमें बच्चे की खुराक का ख्याल रखना पड़ता है। पहले लोग बोलते थे कि बच्चा पैदा होने के भाई 6 घंटे बाद दूध पिलाना, 12 घंटे के बाद दूध पिलाना, आजकल हम बोलते हैं कि इमीडिएटली बच्चे को दूध न्यूट्रिशन देनी है।
0: और माँ
1: फिर
0: का दूध
1: बच्चा होने
0: पिलाना
1: के
0: है,
1: बाद हाँ
0: माँ का दूध पिलाना
1: दूध
0: है।
1: पिलाना, और माँ का ही दूध ज़्यादा सबसे अच्छा दूध माँ का ही होता है। एक तो ये रेडीमेड होता है, इन्फेक्शन का कोई चांस नहीं होता है, और उसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो बच्चे को कोई बीमारियों से बचाते हैं, कोई इन्फेक्शन से बचाते हैं। और तीसरा ये है, कोई इसका कोई मूल्य नहीं देना पड़ता है,
0: जी
1: तो हर टाइम प्रॉपर टेम्परेचर पर मिलता है, सही मात्रा में जितना बच्चे को चाहिए होता है उतना दूध। बच्चे को दूध से इन्फेक्शन नहीं होती है, जैसे अगर बोतल का दूध पिलाएंगे तो बोतल अगर बॉयल नहीं की होगी, इन्फेक्शन होने का डर है।
0: बच्चे
1: फिर
0: को एकदम
1: अगर
0: से नहलाना चाहिए जब बच्चा पैदा होता है?
1: टेम्परेचर, हम बोलते हैं कि जब जैसे बच्चा माँ के पेट में होता है वो ऐसे टेम्परेचर पर होता है, गर्म होता है बच्चा, बाहर के टेम्परेचर से माँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो अगर जब बच्चा बाहर निकलता है तो हम बोलते हैं कि उतने कमरे में, गर्म कमरे में रखना चाहिए कि नॉर्मल आदमी को पसीना आए, तो हमें बच्चे को इमिजिएटली नहाना नहीं चाहिए।
0: जी,
1: हम बोलते हैं कि एक वीक तक, कम से
0: नहला
1: कम
0: बच्चे
1: एक वीक
0: को
1: तक बच्चे को
0: नहलाना नहीं
1: नहलाना नहीं
0: चाहिए।
1: चाहिए,
0: जी
1: बच्चे को गर्म रखना चाहिए। सर्दी से एकदम बच्चे को निमोनिया होने का डर रहता है, तो जो बच्चे की डेथ होती है, बच्चे जो 7 दिन के अंदर अंदर मरते हैं, एक तो ये टेम्परेचर कम होने की वजह से मरते हैं, दूसरा पैदा होते टाइम अगर उनके मुंह में कोई पानी वानी चला जाता है, गंद चला जाता है, सांस नहीं ले सकते हैं, उस वजह से मरते हैं, और तीसरा अगर दूध नहीं पीते हैं तो खुराक की वजह से, चौथा इन्फेक्शन से। ये चार चीज़ें जिनकी वजह से बच्चे की डेथ होती है।
0: अच्छा, बच्चा जब पैदा होता है तो इमिजिएटली किस तरह का वैक्सीन दिया जाता है
1: जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम
0: उसके?
1: हम बोलते हैं 1 वीक के अंदर अंदर ट्यूबरकुलोसिस डिजीज होती है, जो हर न्यू बॉर्न को लग सकती है किसी टाइम, क्योंकि ये जरासीम हवा में होते हैं, तो न्यू बॉर्न को कभी भी ये इन्फेक्शन का डर रहता है। तो हम जब बोलते हैं कि बर्थ से लेकर वीक के अंदर अंदर कभी भी इम्यूनाइजेशन हो जानी चाहिए,
0: जी,
1: चाहे बर्थ के इमिजिएटली सेम डे ही हो जाए। तो ये जब डिलीवरी होती है तो हम कोशिश करते हैं, अगर हॉस्पिटल में डिलीवरी हो तो हम बोलते हैं कि BCG वैक्सीनेशन उसी टाइम लग जानी चाहिए, तो ये इमीडिएट वैक्सीनेशन है। उसके बाद फिर बोलते हैं हम पोलियो के 5 जानलेवा बीमारियां जिनकी वैक्सीनेशन लगती है, तो मदर को उनके बारे में हम पहले ही प्रेगनेंसी के दौरान ही बता देते हैं कि भाई डिलीवरी के बाद बच्चे को इन इन्फेक्शन से बचाने के लिए कुछ इम्यूनाइजेशन या ये वैक्सीनेशन करानी होती है। एक तो पोलियो है,
0: पोलियो ड्रॉप्स
1: पोलियो
0: पिलवानी है।
1: ड्रॉप्स पिलाते हैं।
0: जी
1: दूसरा उसके बाद है काली खांसी है,
0: जी
1: फिर गलघोंटू की बीमारी है, और टेटनस है। ये 5 है। तो एक तो BCG बर्थ पे लग जाता है, फिर पोलियो की बूंदें भी पिला देते हैं,
0: जी
1: उसके बाद 1.5 महीने के अंदर अंदर ये, फिर हम DPT इंजेक्शन बोलते हैं इसको, उसमें 3 इंजेक्शन होते हैं, डिप्थीरिया गलघोंटू बीमारी होती है। अगर ये हो जाती है तो उसमें मॉर्टेलिटी बड़ी होती है, बहुत बच्चे मरते हैं, इलाज कम होता है, तो हम इसको बचाने से पहले ही इंजेक्शन लगा देते हैं कि बच्चों को हो नहीं जाए। फिर जो DPT इंजेक्शन है उसमें पर्टुसिस होता है, काली खांसी का वैक्सीन होता है और टेटनस का वैक्सीन होता है। तो ये 3 है, 1-1 महीने के अंतर पे देते हैं। फिर उसके बाद 9 महीने पर मीजल्स का, फिर उसके बाद मम्स का देते हैं, कई बार आप वो रुबेला का वैक्सीन भी देते हैं, उसको बोलते हैं MMR, मीजल मम्स रुबेला, ये 3 का वैक्सीन है, ये
0: ये
1: वैक्सीन
0: एक
1: देते
0: साल
1: हैं,
0: तक दिए जाते हैं।
1: ये 1 साल तक दिए जाते हैं। फिर बूस्टर डोज 1.5 साल के बाद मिलती है। फिर स्कूल गोइंग एज पे टेटनस इम्यूनाइजेशन, जो DPT है उसमें, क्योंकि हम बोलते हैं जो
0: ये पोलियो
1: डिप्थीरिया,
0: पोलियो की ड्रॉप्स जो होती है पिलवानी पड़ती है, साल में कितनी बार पिलवानी पड़ती
1: ये
0: है?
1: हम ऐसे तो 3 डोजेज हैं पोलियो के, 3 डोजेज हैं, और उसके बाद बूस्टर डोजेज, जैसे ये आप अनाउंस करते रहते हैं कि भाई
0: जी,
1: दिसंबर और जनवरी में ये पिलाते हैं, वो इनके अलावा 5 साल के बच्चों को कभी भी पिला सकते हैं। तो ऐसे मिनिमम 3 डोजेज होती हैं इसकी, ये 1-1 महीने के अंतर पे देते हैं, जब बच्चा 1.5 महीने का हो जाता हो तब स्टार्ट करते हैं।
0: अच्छा डॉक्टर पुष्पा, हम आखिरी हिस्से में आए हैं इस कार्यक्रम में। ये बताइए, प्रसव यानी अगली प्रेगनेंसी
1: हाँ,
0: के बीच में कितना फासला होना चाहिए?
1: हम बोलते हैं मिनिमम 2 साल का गैप होना चाहिए ताकि मदर की हेल्थ भी ठीक हो जाए और वो पहले बच्चे को लुक आफ्टर कर सके अच्छी तरह से। तो पहला बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए फिर वो दूसरा बच्चा पैदा करे। अगर एक साथ साथ ही बच्चे होते जाएं, एक बच्चा 1 साल का दूसरा बच्चा, वो अभी पहली वीकनेस से ही उभरी नहीं होती है, एक बच्चे को भी लुक आफ्टर नहीं कर सकती है, वो दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है। तो फिर ना अपनी सेहत का ख्याल रख सकती है, ना जो बच्चा पहले है उसका ख्याल रख सकती है, और जो पेट में पल रहा होता है ना उसको अच्छी खुराक मिल सकती है।
0: और आपका ये भी संदेश होता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार,
1: सुखी परिवार,
0: हम दो हमारे दो,
1: हमारे दो।
0: डॉक्टर पुष्पा आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते अपनी पसंद का कोई गाना बताइए हमें।
1: अब ये आखिरी गाना है पाकीज़ा फिल्म का,
0: पाकीज़ा फिल्म से। चलिए पुष्पा जी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी पसंद का गाना भी सुनिए, आप हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया।

0: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पुष्पा रैना से की गई बातचीत। बातचीत का विषय था गर्भवती महिलाओं को किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, और आपसे बातचीत कर रहे थे रमेश मराठा।
1: तो श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा?

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। अंबाला के प्यारे श्रोताओं, आज हमारे पास अंबाला के इतिहास और गर्व से जुड़ा एक बेहद खास तोहफा है। आप सब जानते हैं कि अंबाला का शहीद स्मारक अब बनकर तैयार है। ये वो पावन भूमि है जिसने 1857 की आजादी की पहली लड़ाई का बिगुल फूंक कर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आगाज किया था। ये स्मारक हमारे शहीदों के शौर्य और बलिदान का प्रतीक है और इसी महान विरासत को श्रद्धांजलि देने के लिए अंबाला के जाने माने संगीतकार श्री विशाल गोल्डी ओम नमो साउंड्स, जिन्हें हम विशाल शर्मा के नाम से भी जानते हैं, लेकर आए हैं एक जबरदस्त स्वतंत्रता संग्राम थीम सॉन्ग। ये गीत अंबाला की मिट्टी की कहानी कहता है, उस जज्बे को सलाम करता है जिसने देश को आजाद कराने की लौ जलाई। इस गीत को विशाल गोल्डी और हरजीत बिट्टू ने मिलकर लिखा और कंपोज किया है। ये धुन आपके दिल में देशभक्ति का एक नया जोश भर देगी। पेश है अंबाला के गौरवशाली इतिहास को समर्पित शहीद स्मारक थीम सॉन्ग सभी एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता के श्रोताओं की।

0: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।
1: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
2: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: 17 किलोमीटर के करीब है, और ये जो पंचायत है 850 इसकी वोट है और 1200 के करीब पॉपुलेशन है। अपने सरपंच जो दीपक नागपाल जी हैं, इन्होंने काफी अच्छा कार्य जो उन्होंने बताया किया अपने गांव में, जो इनके मुझे बढ़िया जो उनके काम में लगे हैं वो है कि इन्होंने एक तो आपका इंडोर जिम बनाया है, और एक इनके गांव को कोई बस सर्विस नहीं थी, जैसे लड़कियां जो हायर स्टडी के लिए थी वो कॉलेज छूट जाती थी, उनको सही करने के लिए, उनको ड्रॉप आउट को रोकने के लिए इन्होंने अपने गांव की जो बस सर्विस है वो चालू कराई। ये बता रहे थे कि आप इनके गांव से 5 से 6 टाइम जो बसों के जाते हैं, जिससे बच्चों को भी सहूलियत हुई है और दूसरे जो शहर आने जाने वाले लोग हैं।
1: ये जो गुरविंदर जी, आपको तो केवल इनका परिचय कराना था, इनके काम तो हम इनके मुंह से सुनेंगे। दीपक भाई,
0: इनके जो मेन कार्य हैं वो ये हैं, बाकी जो विकास की कहानी है जो अपने मुख से सरपंच साहब आप साझा करेंगे, मैं गुजारिश करूंगा अपने आज के मेहमान श्री दीपक नागपाल जो सरपंच है हमारे, तो आपके गांव के विकास की कहानी हमारे श्रोता हमारे
1: इससे पहले के दीपक जी अपनी बात कहना शुरू करें, मैं एक बार पुनः आप सब मित्रों का स्वागत करता हूं, और भारत सोपोरी जी रेडियो वितस्ता की तरंगों के साथ, वितस्ता की लहरें और रेडियो वितस्ता की तरंगों के साथ लौट आए हैं। मुझे खतरा था कि आज भारत जी हमारी इस पंचायत में नहीं होंगे। दिनेश व्यास जी ने जींद से राम राम कह दिया है। जो मित्र इस समय फेसबुक पर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सबसे अनुरोध करूंगा कि अपने अपनी टाइमलाइन पर इस कार्यक्रम को साझा कर दें। क्यों ललित जी, ठीक रहेगा ना ऐसा कहना
2: जी?
1: सब लोग शेयर का जो इसके नीचे बटन रहता है ना फेसबुक पर, उसको दबा के कम से कम अपने प्रोफाइल पर और अपने सोशल मीडिया के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, चाहे वो व्हाट्सएप है, वहां इंस्टाग्राम है, एक्स है, वहां भी इस कार्यक्रम को आप साझा कर सकते हैं। इससे पहले कि हम नागपाल जी के पास जाएं, ललित भाई
2: जी,
1: ऑस्ट्रेलिया में क्या हालचाल है? मौसम किसा कहे?
2: ऑस्ट्रेलिया में तो जी मैं सिडनी में हूँ, यहाँ काफी ठंड है, और अभी कुछ दिन पहले भारत से आया हूँ, तो भारत में लगभग 40-45 डिग्री का तापमान था, और यहाँ पे आया तो 5 से 11 के बीच में जो तापमान है वो चल रहा है, तो थोड़ा बुखार हो गया, थोड़ा एक हफ्ते से बुखार था, तो यही मौसम है। जैसा नॉर्दर्न इंडिया एकदम जो ऑपोजिट है वो यहाँ पर सिडनी में मौसम हो गया,
1: इन्हें क्या कहोगे, गोवड़ीपुर की बोली में ताप चढ़ गया जान दे ही।
2: बस जी पाड़ा पड़ रहा है जी,
1: पाड़ा पड़ रहा है, नहीं पड़ा है पाड़ा, ताप चढ़े तो दोनों उल्टी बात होगी ना,
2: बस वो ताप तो अपना चढ़ गया जी, ताप तो आ ही जाएगा।
1: चलिए आपसे हम पूछेंगे राम राम हरियाणा ऐप कैसे इंस्टॉल करना और उसमें और क्या फीचर्स आप भविष्य में जोड़ने वाले हैं। एक बार भारत जी,
3: सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: आपकी आवाज सुनाई नहीं दी
3: जी, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भारत अंबाला से FM 90.0
1: में ऑडियो नहीं आ रहा आपका? हाँ,
3: ऑडियो जी, ऑडियो नहीं आ रहा,
1: कुछ तो गड़बड़ है
4: सर, शायद नेटवर्क इशू है भारत जी।
3: नहीं नेटवर्क
1: क्या
3: है, नहीं नेटवर्क इशू नहीं है भाई साहब।
1: चलिए नागपाल जी के पास चलते हैं। जी गांव का परिचय दीजिए, अपना परिचय दीजिए, और आज आप हमारे बीच में हैं तो आपने कौन कौन से तीर मारे अब तक, कौन कौन से कीर्तिमान अपने गांव में प्रधानी आने के बाद, सरपंची थाने के बाद वो स्थापित किए हैं, जरा उनकी चर्चा कर लीजिए।
3: अब मेरी आवाज आ रही है सर?
1: हाँ भारत जी, अभी आई आप
3: सभी
5: जी। डॉक्टर साहब पहले तो सभी FM के साथियों को और साहब तो राम राम। मैं कोट कछुआ कलां का सरपंच हूँ, जो एक छोटा सा गांव है अंबाला शहर से, जैसे गुरविंदर जी ने बताया कि 16 से 17 किलोमीटर और अंबाला छावनी से लगभग ये 8 से 9 किलोमीटर के बीच आता है। डॉक्टर साहब तीर तो क्या मारा, ये तो सरकार की एक देन है। सबसे पहले तो मैंने अपने गांव में जैसे आपने कार्यक्रम चलाया राम राम, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस राम राम हरियाणा कार्यक्रम में मुझे जुड़ने का आप लोगों ने मौका दिया, इसलिए मैं सबसे पहले तो आप सबका ग्राम पंचायत की ओर से और पूरे ब्लॉक वन की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। तो सबसे पहले तो मैं तो सरकार की यही सराहना करूंगा कि पढ़े लिखे सरपंच आए, जिससे आज हम सही तरीके में मतलब गांव का विकास कर रहे हैं। और मैंने जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की, मनोहर लाल जी की और आगे अब नायक सैनी जी की एक विजन रहा है कि गली नाली से उठ करके मैंने गांव में अपना विकास करने की और गांव में मतलब एक भाईचारा जोड़ने का काम किया। जैसे गुरविंदर जी ने बताया कि मेरे गांव की बच्चियां 5 किलोमीटर शाहपुर पैदल पढ़ने जाती थी और पैदल आती थी जी। तो मैंने हमारे पहले यहां से पूर्व मंत्री परिवहन मंत्री असीम गोयल जी थे, उनसे रिक्वेस्ट करी, उन्होंने बस चलवाई। उसके बाद विज साहब आ गए, थोड़ा बस में दिक्कत आई तो अनिल विज साहब ने मेरे गांव को 5 टाइम आज बस मेरे गांव में आती है जी, जिसमें उसका 20 मिनट का स्टे है और मेरे गांव की 20 से 25 बच्चियां जो पैदल जाती थी वो आज पैदल नहीं जाती। तो ये बहुत बड़ी बात यही है कि जैसे मोदी जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी नारे को मैं आगे लेके गया और सरकार ने मेरी बात मानी। तो मैं तो यही कहूंगा कि सरपंचों को प्रयास गली नाली से नहीं बल्कि अपने गांव का भाईचारा है, हम कैसे दिक्कत में लोग हैं उसको हम कर सकते हैं। दूसरा, मैं अपने गांव में जिम लेके आया, ये लगभग 200 से 250 या 300 गांव होगी पूरे हरियाणा के, मेरा छोटा सा गांव है। तो मैंने जब अपनी डिमांड रखी, मैं मुख्यमंत्री जी को मिला, व्यक्तिगत रूप में मिला मैं, तो उन्होंने तुरंत यही कहा कि उन्होंने पूछा कि आप जिम का आपका उद्देश्य क्या है, जिम क्यों बनाना चाहते हो। मैंने कहा जी जिम का तो एक है, सबसे पहले तो बच्चों को नशों से दूर, कि यूथ आज गलत दिशा में जा रहा है। तो मेरे गांव में लगभग उसकी लागत जो होगी 40 से 50 लाख रुपए की मशीनें होंगी, वो हाईटेक जिम है जो आपको बाहर 2-2, 3-3 हजार रुपए महीने में भी नहीं मिलती, वो सारी जिम मेरे गांव में बनी। और महिलाओं के लिए मैंने आउटडोर जिम की व्यवस्था करी और छोटे बच्चों के लिए वही आउटडोर उसमें एक छोटा पार्क बनाया। तो इसके अलावा जब भी मेरे गांव की जरूरत रहती है, चाहे मेरे आसपास के गांव में, इधर नगल में, खैरा नंडियाली में, हमारा जब भी ये फ्लड आया तो मेरे गांव से मैंने 50-50 रुपए इकट्ठे करे और जाके, मेन बात पैसे की नहीं थी कि हर बंदे का एक उसमें सहयोग हो, उसको ये लगे कि हमने दूसरों की मदद करनी है, भगवान ना करे कल को हमारे गांव में कोई संकट आए तो हमने हमारी भी वो लोग हेल्प करें। और भी बहुत से विकास के कार्य है गांव में, मेरे ट्यूबवेल नहीं था, पानी का एक ही ट्यूबवेल था, अब छोटे गांव में 2 ट्यूबवेल ने बड़ी जी के पास जनसंख्या है, वो कहते कि एक ट्यूबवेल तो सफिशियंट है। मैंने कहा जो उसका डिस्चार्ज कम है पूरे गांव में, उधर वाल्मीकि बस्ती में ऊंचे एरिया में पानी नहीं आता। उन्होंने तुरंत मतलब मेरी फाइल पे साइन करते हुए चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को लिखा आगे, फिर ये जहाँ पे नीचे फाइल जाती है। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी की बदौलत मेरे गाँव में एक ट्यूबवेल और लग के, जिसकी पाइपलाइन का काम अभी चल रहा है। गांव में विकास के कामों की झड़ियां मुख्यमंत्री जी ने लगा दी, परंतु हमारा विजन एक ही होना चाहिए, हमें गली नाली से उठ करके एक ऐसे काम की तरफ जिधर सरकार जा रही है, जहां पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नायब सैनी जी की जो नीतियां उनको हमें आगे कैसे बढ़ाना है, हमें गली नाली से उठ करके इस अपने प्रदेश को कैसे हम लोग अपने सहयोग से आगे कर सके, मेरा यही प्रयास रहा।
1: एक बढ़िया काम किया आपने, आपने जो ये लाइन पकड़ी कि गली नाली से बाहर निकले सरपंच, इससे ऊपर उठे, और गांवों में और भी बहुत सारे काम करने को हैं, लेकिन गली नाली से तब उठा जाएगा या तब आप उठ पाए होंगे सरपंच साहब दीपक जी, जब आपके गांव की गली नालियां सारी ठीक हो गई होंगी, क्योंकि वो भी महत्वपूर्ण काम था। आपके गांव की गली नालियों का इस समय क्या हाल है, आलम क्या है? ऐसा तो नहीं है आप गली नाली से उठ गए और

0: है, एक तो दीपक जी हैं और एक मैं हूं। कोशिश है कि अम्बाला की बात आप सभी लोगों तक, पूरे विश्व तक पहुंचे। और इस समय दीपक नागपाल जी, आप इस समय लाइव है FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, जो अम्बाला से प्रसारण करता है। और मुझे पूरी आशा है कि आप जो बात रखेंगे अपने गांव की, वो हमारे अम्बाला के सभी श्रोताओं तक पहुंचेगी। और उम्मीद करते हैं कि आप जो भी आपने कार्य किया है और उस तरीके से आप अपनी बात रखेंगे। जी वीरेंद्र सर,
1: नमस्कार
0: मैं
1: वार्जी,
0: यही कह रहा
1: नमस्कार।
0: था।
1: दीपक जी, दीपक जी पहुंचे हैं क्या? दीपक जी गायब हो गए ना,
0: हाँ,
1: इनका
0: वो
1: कैमरा नहीं चला।
0: नेट कनेक्टिविटी का कोई इश्यू है जी।
1: चलिए इनका इंतजार करते हैं, हमने तो सवाल दीपक जी से ही करना था। चलिए प्रीतम जी गूंजिए जरा।
2: नमस्कार सभी श्रोता को। और बार जी कहे थे विषयों में, बार जी आपकी आज हमारे साथ ललित जी जुड़े हुए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया सिडनी में तो आपकी आवाज पहुंच रही है,
0: जी, बहुत
2: ये
0: बहुत
2: तो
0: धन्यवाद
2: कंफर्म है।
0: जी।
2: और सर मैं दादरी के मौसम के बारे में बताना चाह रहा था। आज दादरी में थोड़ा सा तूफान आया, उसके बाद बारिश हो रही है, तो मौसम बड़ा सुहाना है चरखी दादरी में, क्योंकि बारिश हो रही है सर।
0: यहाँ
1: बधाई हो आपको।
0: यहाँ तो मौसम गर्म है, और सबसे बड़ी बात है इस समय हमारे स्टूडियो की लाइट भी चली गई है। अभी हम बैकअप पर आपके साथ जुड़े हैं, और जैसे ललित जी ने आज कहा, मेरे पास कुछ जानकारी है रोज की तरह, वो मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा जब तक हमारे साथ दीपक नागपाल जी जुड़ेंगे। सभी श्रोताओं को कहना चाहूंगा कि आप इस कार्यक्रम में कॉल करें, नंबर है 88 16 904 904। आप अपनी कोई उत्कृष्ट कार्य अगर आपने किया है वो बात बताइए, या अगर आपके पास कोई कमी है जो हरियाणा सरकार तक आप पहुंचाना चाहते हैं वो बात आप हमारे तक पहुंचा सकते हैं। और आज है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या 2083 विक्रम संवत, और सिडनी से ललित जी का आप एक बार फिर पुनः स्वागत
1: मैं ये कहना चाह रहा था, भारत जी दीपक
0: जी।
1: जी लौट आए। दीपक जी अगर आवाज आप तक पहुंच रही है ना, तो जरा हाथ खड़ा करके संकेत कर दीजिए। जी अब
0: जी
1: दीपक जी मैं ये कह रहा था कि आपने, ओहो, मैं ये कह रहा था कि आपने कहा कि गली नाली से सरपंच हटके आगे बढ़ चले, ये आपकी अवधारणा है। मैंने प्रश्न ये किया, आप तक शायद आवाज नहीं पहुंचे हैं, कि गली नाली से तब निकलता है कोई जब गली नालियां ठीक हो गई हों, तो आपके गांव की गली नालियों की दशा क्या है वो भी बता दीजिए। दीपक जी, दीपक
3: ये क्या बात,
1: जी
3: दीपक
1: आवाज आ रही है
3: नागपाल
1: आपकी, बताइए। दोबारा
0: आपकी आवाज पहुंच रही है यहाँ पे दीपक जी।
3: कम।
1: लो जी दीपक जी तो आज परेशान हो गए हैं,
4: हमारे
1: और
4: लिसनर हमारे साथ जुड़े हैं। सॉरी मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ।
0: जी
4: कुछ
1: जी
4: लिसनर हमारे साथ जुड़े हैं जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। विजय सिंह हमारे साथ जुड़े हैं जो कमेंट्स कर रहे हैं हमारे साथ की राम राम हरियाणा। व्यास जी हमारे साथ जुड़े हैं जो जय श्री राम बोल रहे हैं। तो ऐसे सभी श्रोता जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो हमें कॉल कर सकते हैं 88 16 904 904 पर।
1: सरपंच साहब, अगर आपको मेरी आवाज पहुंची हो और आप सवाल सुन पाए हो, तो मैं तो दो बार बता चुका, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। चलिए ललित जी, सरपंच साहब जब जुड़ेंगे तो देखेंगे। आप जरा एक बार राम राम हरियाणा ऐप आने से क्या लाभ होगा और आपने उसमें क्या कर दिया, उसकी स्थिति क्या है, जरा वो बता दीजिए
3: जी। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि राम राम हरियाणा जो कार्यक्रम है, केवल सिडनी नहीं, हरियाणवी जहां जहां बसे हुए हैं, जहां जहां हम सबसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो या किसी भी सोशल मीडिया या व्हाट्सएप या किसी तरह से हमारे साथ जुड़े हो, हर जगह पहुंच जाता है। और हम सभी उसको शेयर करें तो हर कोई, सारे हरियाणवी एक जगह पर जो है वो जुड़ पाएंगे अपने गाँव को, अपनी मिट्टी को। तो दीपक जी जुड़ गए सर, अगर आप पहले कंटिन्यू दीपक जी के साथ करें तो।
0: आप
1: नहीं जी, आप अपनी बात जारी रखें।
0: ललित जी आप पूरा कीजिए और एड्रेस भी बता दीजिएगा ऐप का
3: जी। तो राम राम हरी, मैं डर गया था कि अभी मेरा एड्रेस ना बोल दिया।
0: नहीं, ऐप का एड्रेस आपका नहीं।
1: ऐप ऐप
3: मेरा भी एड्रेस ऐप वाला ही एड्रेस है।
0: हाँ, वो तो ठीक है, हमें ऐप का एड्रेस चाहिए ताकि हम ऐप से अपने प्रसारण को सीधा लाइव करेंगे जी।
3: राम राम हरियाणा ऐप जो है वो भी गूगल एंड्रॉइड या प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। यदि आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर के राम राम हरियाणा अगर यदि आप सर्च करेंगे तो ऐप आपको मिल जाएगी, आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और इंस्टॉल करने के बाद जस्ट आप प्ले करेंगे हमारे

0: पुराने एपिसोड्स हैं, जो पुरानी जो हमारी चर्चाएं हैं वो आप देख और सुन पाएंगे। इसी के साथ यदि आप आईफोन यूजर हैं या फिर आप वेब के थ्रू या वेब प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो आप radio.gramoday.com, दोबारा से बताता हूँ, radio.gramoday.com, इस वेबसाइट पर जा करके और आप जो है रेडियो को लाइव सुन सकते हैं। अभी मैं इसकी जो साउंड क्वालिटी उसे अपग्रेड कर रहा हूँ, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं बीच में मैं कर रहा हूँ, तो विद इन फ्यू मिनट्स है जो वो अपग्रेड होके एंड वो लाइव हो जाएगा। तो आप इस ऐप को जरूर इंस्टॉल करें और जरूर साझा करें अपने जितने भी सगी साथी हैं, सभी के साथ शेयर जरूर करें।
1: ग्राम
0: जी
1: उदय का
0: धन्यवाद।
1: स्पेलिंग बताएंगे सर? RADIO डॉट GRAM
0: ODAY
1: ओके
0: ग्राम
1: okay. उदय
0: ODAY.com।
1: जी जी धन्यवाद धन्यवाद।
0: जी
1: दीपक जी आपको आवाज मिल रही है?
2: जी सर जी।
1: डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सर का क्वेश्चन था, उसका आप उत्तर दीजिए, अगर आपने नहीं सुना वो रिपीट करेंगे। चलिए जब तक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सर आते हैं तब तक मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा। मैं भारत सोपोरी हूं, अंबाला छावनी से प्रसारण करने वाला रेडियो स्टेशन रेडियो वितस्ता। आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस समय हम अंबाला से आप और मैं हैं, अंबाला ऐतिहासिक तौर पर अगर देखेंगे तो 1857 से अंबाला का नाम जुड़ा है, आजादी की लड़ाई के साथ जुड़ा है। तो हम सबकी जिम्मेदारी बहुत बनती है कि हमारा जो इलाका है, हमारी जो गांव है, उसके पथ, उसकी जो तरक्की है वो बहुत आगे की तरफ होनी चाहिए। जैसे आपने कहा, आपने लोगों का नाम लिया और उन्होंने बस की सुविधा की और आपके पास जो जिम की सुविधा की, इस तरीके से आने वाले दिनों में आप कौन सी ऐसी सुविधा सरकार से डिमांड करना चाहेंगे जो आपके गांव में नहीं है? आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि युवाओं को नशे से दूर रखे खेल के साथ जोड़ा जाए, एक्सरसाइज के साथ जोड़ा जाए। इस विषय में आपकी और अगली कौन सी ऐसी योजना है जो आप सरकार से लेना चाहेंगे?
2: जिसकी प्रपोजल मेरी गई हुई है और मुझे आशा है कि वो जल्द मेरे गांव में ही लाइब्रेरी बनेगी।
1: जी
2: और सेकेंडली, जब से मैं सरपंच बना हूं लगभग 3.5 साल हो गए, ये मेरा 10वां और मेरे गांव का पहला ने अपने गांव में लगवाया। मैं सभी सरपंचों से निवेदन करूंगा कि अपने को ब्लड डोनेशन कैंप, ई लाइब्रेरी और इंडोर जिम और ये जरूर बने। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक सपना है कि हर घर के ऊपर छत हो और हर घर में नल हो और उस नल में जल हो और वो भी शुद्ध जल, तो मेरा यही प्रयास है कि मेरे गांव में मेरे 14 कॉलोनिया, जैसे लोगों के अपने गांव में कॉलोनिया कह देते हैं वैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, 14 कॉलोनिया आई। और पहले की सरकारों में क्या चलता था, चाहे लोग आगे वो 1-1 90 हजार में मिलते, जिसमें 20-20-30 हजार रुपए लोग खा जाते थे। परंतु मैं एक चीज कहता हूं कि आज के देश में, मतलब आज के जो ये हमारा सरकार है, हरियाणा सरकार ने 14 के 14 बंदों ने अपनी बोला हूँ उनको फोटो स्टेट करवाने बाहर नहीं जाना पड़ा। मैंने अपने घर पे मशीन लगाई हुई है, चलो तो कोई डॉक्यूमेंट वो ले आए अलग बात हो, किसी ने करवाई हो वो बात अलग है। तो हर घर जितनी उनकी की तीसरी का एक मतलब ये नहीं होता कि चिट्टा कुर्ता पजामा डाल लिया, पेंट लगा लिया कि सरपंच बन गए। हम गांव के एक नौकर हैं, हमने हम सरपंच तब को सरपंच गांव की तरक्की कर सकता है जब वो है। मेरे गांव में आयुष्मान योजना के अंतर्गत मैं कह रहा हूँ कम से कम भी 100-200 लोगों ने इलाज फ्री करवाया। बहुत बड़ी बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स जो है वो लोगों ने ठीक करी। उसके अलावा मैं समय समय पर अपने गांव में मेडिकल कैंप, जैसे जैसे ये जो काला मोतिया होता है इसके ऑपरेशन वगैरह सरकार निशुल्क करती है। तो उसके बाद मेरा एक ही सपना है सरकार से, एक तो कनेक्टिविटी, मेरे गांव से एक रास्ता है जो छोटे कोट कछुआ मोड़ा ये इधर जाता है, मतलब 10-12 गाँव को जाता है, वो रास्ता नहीं बना जिसकी मैंने डिमांड भेजी हुई है। एक सामुदायिक भवन
1: जी,
2: मेरे गांव में कोई भी सामुदायिक भवन नहीं है, उसकी मैंने सरकार से डिमांड करी है कि मुझे तो छोटी गली नाले की कोई ग्रांट नहीं चाहिए, एक सामुदायिक भवन और एक कनेक्टिविटी जो लगभग 6 गट्ठे का रास्ता है। मुझे लगता है कि माननीय डॉक्टर साहब बैठे हैं वो हमारी बात को ऊपर तक पहुंचाएंगे। कनेक्टिविटी, जैसे छोटा कोटकचवा बड़ा कोटकचवा, दो भाई हैं, एक छोटा एक बड़ा है, लेकिन हमारी कनेक्टिविटी नहीं है। बारिश आ जाती है तो हमारी कनेक्टिविटी नहीं है। और एक जो सरकार का एजेंडा इस टाइम चल रहा है कि जितने गांव है, मेरे शापू से आपने देखा होगा पीछे डांगरी उड़ने का बड़ा मुद्दा चला है, मिट्टी का बहुत बड़ा मैटर चला है, जो आपका भी जैसे अम्बाला कैंट से आप जानते हो, पूरा अम्बाला कैंट डांगरी की वजह से डूबता है। इंडस्ट्री एरिया में मैंने सुना था कम से कम 5-6 हजार करोड़ का नुकसान उसमें हुआ था,
1: दो बार
2: आसपास की जितनी कॉलोनिया है जो वो डूबते हैं। परंतु उसमें कुछ ठेकेदार लगाओ या सरकार का, सरकार तो क्या करेगी, सरकार तक ऊपर बात पहुंचती नहीं है। कुछ जो नीचे ऑफिसर है वो सरकार को गलत कर रहे हैं। वो डांगरी सही तरीके से खुदनी चाहिए, मिट्टी का सही प्रबंध हो जाए, उसको बांध कूद पे लग जाए, रास्ते कनेक्टिविटी खराब ना हो। मेरा ये भी एजेंडा है, अकेली मेरी पंचायत ने ये लिख के दिया है कि हम मिट्टी उठवाने को तैयार है, बशर्ते हमारे रास्ते प्रभावित ना हो और किसान को उसका सही मुआवजा मिट्टी का मिले। तो बाकी और भी जितने डेवलपमेंट के हैं, मेन बात वही है कि अपने को गांव में भाईचारा बनाना है।
1: जी जी दीपक जी, आपने जो टांगरी की बात की वो बहुत ही भयंकर समस्या है और पीछे दो बार इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत सारा नुकसान भी हुआ है और जो आसपास के गांव है, खेलन मालन है, वहां तक बाढ़ का प्रकोप जो चला गया। अगर आप इस तरीके की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो आपको इजाजत दें तो उसकी मिट्टी खोली जाए, और साथ में मिट्टी का ही उसमें समस्या नहीं है, उसमें अनधिकृत जो घर बन रहे हैं, जो मकान बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमने उस नदी का रास्ता रोक के रखा है, तो जब वो अपने प्रकोप में आती है तो वो फिर कुछ भी नहीं देखती है, जो सामने आते हैं उसको उड़ा के ले जाते हैं। आपने बात की अभी डॉक्टर वीरेंद्र सर के लिए कि वो आपके लिए जो रास्ता है वो आपको करेंगे, वो जरूर हम भी सिफारिश करेंगे, पर उससे पहले आपको डॉक्टर वीरेंद्र सर का सवाल का जवाब देना होगा जो उन्होंने पहले भी 2-3 बार पूछा। सर आपका सवाल प्लीज आप पूछिए, इस समय कनेक्टेड है दीपक जी।
3: आज तो आज जो है ना, वो दीपक जी बहुत कुछ कहना चाहते हैं, मैं बहुत कुछ पूछना चाहता हूँ, लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी शायद बाधा बन रही है, मैं तीसरी बार ये सवाल पूछ रहा हूँ। दीपक भाई, आपने कहा कि आपने अपनी सरपंची में गली नाली से बाहर निकल के ऊपर उठकर काम कराने का सिलसिला शुरू किया, ये सुनना बहुत अच्छा लगता है। अंततः केवल गली नाली बनाना ही सरपंची नहीं है, ग्राम विकास नहीं है, ग्राम विकास के बहुत सारे और आयाम भी हैं और इससे बाहर निकलकर भी बहुत करने वाले काम हैं। अब मसला ये है जो मेरे मन में सवाल पैदा हुआ, और एक कमेंट भी मित्र कर रहे हैं, कोई आपके चाहने वाले हैं कि हमारे चाहने वाले हैं, यूट्यूब पर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो उन्होंने सुमित है शायद नाम, भारत जी पढ़ दीजिएगा
1: जी जी।
3: तो वो सवाल पेंडिंग है, रुकिएगा भारत जी एक मिनट, सवाल मैं दोहरा दूं
1: जी जी।
3: सवाल ये है कि आप गली नाली से ऊपर उठे, आपने और कामों पर फोकस किया, बहुत अच्छा, लेकिन अगर मैं आज समीक्षा के भाव से आपसे पूछूं, आपके गांव की गली नालियों की स्थिति क्या है, क्या वो पूरी तरह दुरुस्त हैं कि हम उनसे ऊपर उठकर बाकी काम भी करें, आज की स्थिति क्या है?
2: मेरी गलियों की देखो सर, ऑलमोस्ट जो है 90-95% गलियां जो हैं वो सभी सही हैं। मेरी जो मेन समस्या है सर, देखो गली क्या है, गली कोई भी सरपंच बनाएगा, पढ़े लिखे सरपंच का यही मतलब है कि सरकार की योजनाएं। अब आप एक चीज बताओ, जो मेरी पंचायत है वो लगभग 800-900 वोट है और लगभग 1100-1200 पॉपुलेशन है उसकी। हमें सरकार इतना फंड SFC FFC में देती है और ग्राम पंचायत की कुछ में इनकम होगी कुछ में होगी नहीं, जिससे हम गलियां नालियां तो आराम से बना सकते हैं, उसके लिए हमें सरकार से कोई डिमांड करने की जरूरत नहीं है। आप देखो आज किसी भी गाँव में गली नाली नहीं, आप गाँव के जाके शमशान घाट देखो, आप एक चीज बताओ, मरना सबने है, शमशान घाटों की बहुत बुरी समस्या है। और सरकारी स्कूल देखो, मेरे गांव के सरकारी स्कूल में बच्चे परफॉर्म करते थे 26 जनवरी, लेकिन वहां पे स्टेज नहीं था, वो एक बारिश आ जाती थी या बरामदे में करते थे, छोटा सा बरामदा था, उसके अंदर फर्श टूटे पड़े थे, उसमें सांप निकल गया। तो अपने को वही बात है, गली नाली के लिए सरकार के पास पैसा ग्रांट लेने की सरपंच को जरूरत ही नहीं है, उसके लिए एक सफिशिएंट SFC FFC। और अब मेरी पंचायत के बाद चलो इनकम 5-6 लाख रुपए है, परंतु सरकार उसके लिए हमें SFC FFC दे ही रही है, मेन बात ये होती है, आप देखो मेरे गांव में 3 वाटर कूलर लगाए, मैंने कोई गेट नहीं लगाया, मैंने कोई कुर्सियां नहीं रखी, मैंने कोई ये नहीं है कि अननेसेसरी को गेट लगा दिया, उसपे 3 लाख 4 लाख रुपए लगा दिया, कुर्सियां ले आया मैं 5-5, 6-6 हजार रुपए की। मेन बात ये है, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है, मैं ये कभी भी नहीं कहता कि गली नाली मत बने, हमें उससे ऊपर उठ के सोचना तो पड़ेगा ना, गली नाली का तो अपने आप ही लोग बनवा ही लेंगे।
3: अब रुकिएगा, मैंने भी ये नहीं कहा कि गली नाली से ऊपर नहीं उठना, मैंने तो पहले ही कहा सरकार ही चाहती है कि ग्राम विकास के सभी आयामों पर काम होना चाहिए, हमारा विद्यालय भी बेहतरीन होना चाहिए, हमारा अस्पताल भी बढ़िया होना चाहिए, हमारा पशु अस्पताल भी ठीक होना चाहिए, अगर आज तक नहीं है और गांव की आवश्यकता है तो वो होना चाहिए, हमारे गांव में जमीनों पर अवैध कब्जे नहीं होने चाहिए, हमारे गांव पर सार्वजनिक जमीनें, पंचायत की जमीन, उस पर अगर कोई कब्जा करके बैठा है तो वो छूटना चाहिए, ये भी ग्राम विकास से जुड़ी सारी चीजें, हमारे गांव की ग्राम सभा वो गांव की संसद की तरह काम करनी चाहिए, ये तो सरकार चाहती है। मेरा प्रश्न तो बड़ा सरल सा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बड़ी संख्या में आपकी गलियां नालियां वो छूटी हुई हों, अगर छूटी हुई हैं, अभी आपने कहा कि 90-95% ठीक है, जो छूटी हुई हैं उनको भी दीपक जी प्राथमिकता के आधार पर ठीक कराएं, क्योंकि मैं दावे के साथ एक बात कह सकता हूं कि वर्तमान सरकार ने गांवों को पैसा देने में भारत जी कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। अगर अगर अगर हमारे सरपंच, अगर हमारे हमारी पंचायतें, अगर हमारी ग्राम सभाएं उस धन का कायदे से उपयोग कर रही हैं, जहां जहां वहां सारी समस्याएं एक एक करके वो दुरुस्त हो गई हैं। देखो सारे काम इकट्ठे तो ठीक नहीं होते, क्यों प्रीतम जी, समय तो लगता है, प्राथमिकता तो तय करनी पड़ती है, लेकिन हम दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। इससे पहले कि प्रीतम जी का प्रश्न हम लें, मैं अभिनंदन करना चाहता हूं दीपक भाई आपका कि आपने अपने गांव में रक्तदान को एक प्राथमिकता का विषय बनाया हुआ है और आपने 10 रक्तदान शिविर अब तक लगाए हैं। भारत जी, कल अंतर्राष्ट्रीय रक्तदाता दिवस था
1: जी,
3: और जब हम रक्तदाता की बात करते हैं, रक्तदान की बात करते हैं, तो एक शब्द जो बोला नहीं जाता लेकिन वो है इसके साथ जुड़ा हुआ,
1: रक्तदान,
3: रक्त देने वाला, रक्तदान जो है वो दान है। बहुत एक समय था जब लोग पैसे लेके रक्त दिया करते थे
1: जी,
3: और रक्त की कमी के कारण बड़ी संख्या में दुर्घटना से ग्रस्त लोग या बीमारियों में जहां खून बदलना पड़ता है उनकी मृत्यु हो जाया करती थी भारत में, लेकिन हाल ही के वर्षों में स्वैच्छिक रक्तदान जिसको कहते हैं, अपनी इच्छा से रक्तदान देना और रक्तदान करके लोगों के प्राण बचाना, अब ये एक अच्छा आंदोलन बन गया है। हमारे यहाँ सब जगह बड़ी अच्छी संख्या में, हर गांव में, हर शहर में, हर वार्ड में वॉलंटरी ब्लड डोनर्स, उनकी संख्या बहुत बढ़िया है। कल सारी दुनिया ने यूनाइटेड नेशंस के आह्वान पर वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया 2026 का, और इस बार उसका जो स्लोगन था भारत जी, उसका भी मैं जिक्र कर दूं, वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइव्स। तो खून देना मानवता को बचाना ही है
1: जी,
3: क्योंकि आप खून जो है फैक्ट्री में नहीं बना सकते। अगर किसी मनुष्य को दुर्घटना की स्थिति में, बीमारी की स्थिति में, किसी स्त्री को प्रसव के दौरान रक्तस्राव होने पे ज्यादा खून बहने के कारण अगर खून चाहिए प्राण बचाने के लिए, तो कोई संसार में अब तक फैक्ट्री नहीं लग पाई जहां खून बना हो और फैक्ट्री से जाओ जी 2 यूनिट 10 यूनिट 5 यूनिट जैसी जहां आवश्यकता वो ले आओ। रक्त बनेगा तो मानव शरीर रूपी फैक्ट्री में बनेगा, और स्वेच्छा से दान करने वाले लोग वो एक तरह से जानदाता, प्राणदाता हैं, जीवन रक्षक लोग हैं। कल क्योंकि हमारा कार्यक्रम लाइव राम राम हरियाणा होता नहीं रविवार को, तो आइए आज हम दुनिया भर के सरपंच साहब के गांव से लेकर के दुनिया में जहां कहीं भी कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से रक्तदान करता है या जिसने आज तक किया है, आइए ऐसे सभी लोगों का, सभी मित्रों का मिलकर के अभिनंदन करें। ये सिलसिला आप बदस्तूर जारी रखें। प्रीतम जी आपका प्रश्न।
4: सर मेरा प्रश्न यही था, जो रक्तदान की बात चल रही है, सरपंच साहब आपने अब तक कितना बार रक्तदान किया है? मैं तो पहले सरपंच साहब से ही पूछ रहा हूँ इसी बात पे। सर
3: स्वयं कितनी बार?
2: 7 बार किया जी टोटल
1: जी,
4: बहुत ही सराहनीय कार्य है सरपंच साहब। और सरपंच साहब आपका दूसरा, मैं आपको देख रहा, आपके देख रहा था, आप जो पेड़ लगा रहे थे एक गांव में, आपने अब तक आपके 3.5 साल के कार्यकाल में आपने प्रदूषण को बचाने के लिए आपके गांव में कितने पेड़ लगाए और बच्चों को कितना जागरूक किया?
2: मैंने, आप देखोगे, मैंने जो पेड़ है अपने गांव में छोटा सा पार्क बनाया। मेरा उद्देश्य है केवल मात्र पेड़ लगाने का नहीं है, उन पेड़ों को हम बचाएं कैसे। पेड़ तो हम लगा देंगे, फोटो खिंचवा ली, उसमें थोड़ा सा मेरा शमशान घाट में मैंने 36 पेड़ मैंने अपने हाथ से लगाए थे, परंतु मेरे गांव के शमशान घाट में फ्लड आ जाता है, डांगरी नदी की जिसकी बात कर रहा था मैं
1: जी।
2: उसमें थोड़ा नुकसान हो गया उनको। इसके अलावा मैंने कम से कम भी जो पौधे मैं बचा पाया हूँ आज तक जिंदगी में, मेरे कम से कम भी 13-14 पौधे ऐसे हैं जो फल फूल रहे हैं। लगाने को तो पता नहीं कितने लगा दिए होंगे, कुछ कोई भेड़ बकरी खा जाती है, आपको पता है बकरी वाला गांव है मेरा, या कुछ पशु खा गए या कुछ सूख गए। 13-14 पौधे मुझे ऐसे हैं जो मैंने लगाए हैं, जिनको देख के मेरा मन खुश होता है कि हाँ मैंने कोई काम जीवन में किया है। और जैसे वीरेंद्र जी कह रहे थे अभी वैध कब्जा के बारे में, मैंने अपने गाँव में मेरे जहाँ पे आज की डेट में लोग बैठते हैं, वहां पे एक टाइम ऐसा था जहाँ पे गुहारे और पाथियां पड़ी रहती थी। अब भी आप मेरे गांव के एंट्रेंस में देखोगे, किसी से पता कर लेना, पंप हाउस है जहां से पूरे अंबाला कैंट का पानी मेरे गांव में आता है, वहां पे बैठने का स्थान, और कम से कम भी 5-7-10 बुजुर्ग अब भी वहां बैठे होंगे। एक बीची चौपाल के पीछे एक गुहारी थी, या और छोटे छोटे छोटे छोटे कब्जे जिससे मेरे गाँव की सुंदरता प्रभावित होती थी। और मैंने जिन लोगों ने कब्जा छोड़ा उन लोगों को मैंने 15 अगस्त पे सम्मानित किया कि आपने मेरी बात मानी। और एक मेरा मुद्दा अभी चल भी रहा है गांव की, मेरी जो पंचायती जमीन है उसपे अवैध कब्जा है, डीसी साहब के पास केस चल रहा है, डीडीपीओ साहब ने मेरे हक में कर दिया, और वो भी जल्दी जो है अवैध कब्जा जो है मेरा छूट जाएगा। गौ चरान के लगभग वो मेरे ख्याल में 16-17 एकड़ है, वो जल्दी मतलब सरकार सॉरी डीसी साहब उसका फैसला करके पंचायत को देंगे, ऐसा मेरा मानना है।
1: दीपक जी आपसे जानना चाहूंगा, दीपक जी आपसे जानना चाहूंगा, पिंड तेजा मोड़ी आपके गांव से कितना दूर है?
2: तेजा मोड़ी
1: जी
2: मेरे गांव से है जी, वो लगभग 4-5-6 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है।
1: हम उस गांव में गए हैं और हमने वहां कार्यक्रम भी रिकॉर्ड किया है, और गांव के जो सरपंच थे उनके साथ हमारी बातचीत हुई थी। वो गांव जो है साफ सुथरा है, नालियां सड़कें एकदम साफ सुथरी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके गांव में भी आ जाऊं और हम वहां पर आके भी आप लोगों से बातचीत करेंगे, या अगर आपके पास कभी समय हुआ तो आप यहाँ आमंत्रित है हमारे स्टूडियो में, यहाँ बैठ के हम बात करेंगे ताकि लोगों तक हम सारी बात पहुंचाएंगे। आपसे जानना चाहूंगा कि पढ़े लिखे सरपंच होने के नाते आप जब योजनाएं बनाते हैं गाँव में, आप सभी को एक साथ खुश रख भी नहीं सकते हैं, हो सकता कोई नाराज भी हो, तो आप किस तरीके से समन्वय बनाते हैं सभी लोगों के साथ ताकि आपका गांव आगे बढ़े और तरक्की करे?
2: सबसे पहले तो सरकार की योजना है ग्राम सभा
1: जी,
2: जो हमारे मेन एजेंडे होते हैं वो ग्राम सभा में हम पास करते हैं। और मैं एक चीज कहूंगा कि अब की जो सरकार है, अब की जो सरपंची है, अब की बार कागजों में ग्राम सभा नहीं है, अब की बार सरकार ने भी आदेश दिया कि आपको ग्राम सभा के लिए अगर पहली उसमें पास नहीं होती तो दूसरी करो, दूसरी में नहीं होती तो तीसरी करो, 10%, 20%, 30% लोग, मैं कहता हूँ ग्राम सभा लोगों ने करी, ठीक है, उतने लोग नहीं आते क्योंकि आपको पता है कोई सीजन में कोई खेती बाड़ी कोई नौकरी पेशा कोई बेचारा दिहाड़ी मजदूरी, परंतु लोगों को अवेयर करते हैं हम। और लगभग 60-70 गांवों में ग्राम सभाएं पास हुई, सारी योजनाएं तो एक जैसे मैं तो ग्राम सभा ही है जी,
1: जी।
2: उसके अलावा कोई भी काम मैंने करना होता है, मैंने अपने गांव में ब्रॉडकास्ट का अपना एक वो बनाया हुआ लिस्ट बनाई हुई है, उसमें मैं मैसेज फ्लैश कर देता हूँ कि हम ये काम करेंगे, आपको किसी भी चीज में दिक्कत लगे आप अपना सुझाव दें। अगर देखो जिसकी जैसे आप कह रहे डॉक्टर साहब गली नाली का है, जिम का है, कोई भी चीज है, अब जैसे जिम वाली बात है, बना देगा कोई भी, उसको मेंटेन करना उसको चलाना बहुत मुश्किल है
1: जी।
2: अब लेडीज का और जेंट्स का बहुत बड़ी समस्या थी, परंतु आप मेरे गांव में आके देखो सुबह का समय लेडीज का है और चाबी एक सार्वजनिक स्थान पर टंगी पड़ी है, सबको पता है वहां पे विद मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग जो करते हैं वॉइस रिकॉर्डर कैमरा सीसीटीवी मतलब सब कुछ है, म्यूजिक सिस्टम सब कुछ है, अपने आप चाबी ले जाते हैं, अपने आप मतलब रख जाते हैं। पहले पहले स्टार्टिंग में तो अब सर्दियों में तो जूते डाल के जाते थे लोग, आप मानोगे गांव के ऐसे लोग हैं मेरे, मैं अपने गांव को आदर्श गांव मानता हूं, मैंने वहां पे लिख के लगाया कि जिम को आप अपना साफ सुथरा है अपना घर समझो, जूते चप्पल बच्चे बाहर उतार के जाते थे, परंतु जिम में कोई चोट लगने का खतरा वो भी रहता है, जिम में नहीं भी आप ज्यादा वो कर सकते, फिर भी मैंने मेंटेन रखा हुआ है, सुबह का समय लेडीज का रखा हुआ है, शाम का जेंट्स का रखा हुआ है। गांव तभी तक आदर्श बन सकता है, गांव तभी तभी साफ हो सकता है अगर वहां के ग्रामीण चाहते हैं। सरपंच क्या करेगा, डोर टू डोर कलेक्शन गांव से हो रही है, जिला परिषद की तरफ से हमें रेडियां मिल गई जो ई रिक्शा है, ये नहीं है कि ई रिक्शा से, मेरे जो गांव का सफाई कर्मचारी है वो ई रिक्शा से पहले भी रेडी पे वो कचरा ढोता था
1: जी।
2: मेन ये भी है, मेरे डॉक्टर साहब से एक रिक्वेस्ट रहेगी, कचरा हम उठा तो रहे हैं परंतु जहां अपन कचरा शेड बनाए तो हुए हैं परंतु वो सही नहीं है, उनको भी दुरुस्त करने का, उनकी तरफ भी सरकार में, जैसे हम कहते हैं कि फोटोशूट वाला सिस्टम है, मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोलूंगा, एक फोटो शूट वाला सिस्टम ही चलता है, कचरा तो हम उठा रहे हैं, पीछे मेरी बात भी हुई थी कि आप इसको, मैं कह हम कचरा इकट्ठा कर देंगे, इसका उठान का कोई सिस्टम होना चाहिए, आपको मेरे गांव के किसी नाली गली में आपको लिफाफा नहीं मिलेगा, जो बीमारी का घर है, जो मेन गंदगी का घर है।
3: आपका जो कचरा है गाँव का, आपने कहा कि उसमें अभी कचरा शेड को ठीक से करने की आवश्यकता है, कचरा शेड जो आपने बनाया है वहां पर सूखा और गीला कचरा अलग अलग करने की व्यवस्था है क्या?
2: ऐसा है डॉक्टर साहब, वहां पे शेड बना हुआ है, कचरा हम ले जाके हम एक खड्डे में डालते हैं, मेन कारण सूखा गीला कचरे का ये दिक्कत है कि जितने कचरा शेड बने पीछे वो सारे के सारे शमशान घाट में बने, तो
3: नहीं
2: शमशान घाट में टेक्निकली
3: आपके गांव में ही अड़ोस पड़ोस में भी ऐसा हुआ है,
2: जितने भी है 99%
3: अंबाड़े की बात कर रहे हो आप
2: जी, 99% गांव में शमशान घाट में कचरा शेड बने हुए हैं।
3: ओके चलिए, कचरा शेड बन गए, पैसा लग गया, लेकिन उस कचरे का निस्तारण की व्यवस्था क्या है आपके यहाँ, क्या है पड़ोस में, क्या है किसी गांव में ट्रीटमेंट प्लांट लगा है क्या अड़ोस पड़ोस में, कचरा इकट्ठा किया, कचरा कचरा घर घर से आपने इकट्ठा कर लिया, लाके कचरा शेड में डाल दिया,
2: एक खड्डे में गिरा दिया, सच्चाई तो यही है जी, उस कचरे का निपटान नहीं हो,
3: इसके निपटान पर कोई काम करना शुरू नहीं किया क्या आप लोगों ने?
2: नहीं हमने हमने पहले
3: आपके बीडीपीओ, आपके बीडीपीओ क्या कहते हैं, आपका पंचायती राज विभाग क्या कह रहा है इस बारे में, मैं तो ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि
2: कचरे राज में
3: कहिए,
2: पंचायती राज विभाग ने तो हमारे से कचरा शेड तैयार करवा दिया, हमने कचरा शेड तैयार कर भी दिया, होता क्या है मैंने आपको पहले बताया, वो शमशान घाट में बना, पीछे हमने 150-200 उसमें बंडल बना के रखे, 150-200 बंडल बना के रख दिए, जब मैंने कहा वो कह रहे इसको वो करो, मैंने कहा इसको उठाओ तो सही, पहले मेन बात यह है कि उठाने का सिस्टम उसका सही से नहीं है, इसीलिए हमने बाहर एक खड्डा खोदा, वो कचरा शेड में हम कचरा नहीं घेरते क्योंकि फ्लड का सीजन है, अब उसमें पानी घुस जाता है, उसमें धूड़ गिर जाती है, आप समझते हो चिकनी मिट्टी डांगरी नदी के पास है वो, तो वो सारा लिपा जाता है, उसको बाहर निकाला उसमें सांप कीड़ा पतंगा उसमें आ जाता है, तो मतलब वहां पे हमें दिक्कत रहती है, खड्डे में हम कर देते हैं उसको, थोड़े दिन बाद उसको जला के उसको मिट्टी डाल
3: अगर,
2: देते हैं।
3: अगर मैं आपसे समाधान पूछूं इसका तो क्या है आपका सुझाव क्या है, क्योंकि सब जगह है
2: जी,
3: एक संक्षेप में समाधान
2: सुझा दीजिए सरकार को इसके निपटान की, इसका निपटारा वो 10 दिन में 12 दिन में,
3: सुनो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल से लेके हर राज्य की सरकार से लेकर और फिर आप तक सब कह रहे हैं कि निपटान होना चाहिए, कचरे का निपटान होना चाहिए, बहुत भयंकर समस्या है ललित जी,
5: बिल्कुल।
3: हर दिन हरियाणा में जो कचरा पैदा होता है उसके अगर आंकड़े उठाओगे आप तो वो जिसे कहते हैं ना माइंड बॉगलिंग, दिमाग भन्ना आ जाए उसको सुन के, और वो इकट्ठा भी चलो हमने कई जगह अधिकांश गांव में करना शुरू कर दिया, कर लिया, उसमें प्लास्टिक भी है, उसमें कांच भी है, उसमें गीला सूखा सब तरह का है, अब उस कचरे का अगर निपटान नहीं हो रहा, उसकी व्यवस्था नहीं हो रही तो फिर संकट है साहब, आपने गांव में तो इकट्ठा करके कहीं डाल दिया, वहां के आसपास के खेत वालों को समस्या होगी, वहां से कोई सड़क गुजर रही होगी तो उस सड़क पर जाने वालों को समस्या होगी,
0: सबसे बड़ी समस्या सर यदि बारिश आ जाए तो वही कचरा है जो उसका जो अर्क होगा वो एकदम नीचे जो ग्राउंड वाटर है उसमें जाकर के मिलेगा और फिर वो आगे समस्या बढ़ती रहेगी
3: जी। दादरी से ममता जी रेडियो स्टूडियो के नंबर पर फोन कर रही होंगी और स्टूडियो के स्टूडियो में क्योंकि आज अभी संगम नहीं है, वो रास्ते में है कहीं बाहर थे, तो उन तक
5: वो कॉल नहीं पहुंच रही, ममता जी मुझे फोन कर रही है, मेरे नंबर पर भी फोन किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि मेरे नंबर पर सीधे फोन नहीं किया जा सकता। ममता जी की कॉल दोबारा आएगी तो मैं आप लोगों को कनेक्ट करूंगा। मेरा दूसरा माइक्रोफोन दे दें जरा सौरभ। ममता जी क्या कह रही है कचरे को लेकर ही कुछ कहना चाहती है कि ममता जी दादरी का कोई और सवाल लेकर के हमारे बीच में आएंगी उनसे पूछेंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ सरपंच साहब, इस कचरे के निपटान के लिए आपके मन में कोई समाधान हो तो बहुत संक्षेप में बताइएगा। उससे पहले हम ललित जी से पूछते हैं। ललित जी उधर ये ऑस्ट्रेलिया वालों के यहाँ कचरा नहीं होता क्या, ये क्या करते हैं?
0: सर कचरा बहुत होता है एक्चुअली। यहाँ का जो मुझे जो चीज अच्छी लगती है वो ये कि हर चीज को ना प्लान करके चलते हैं। मतलब जैसे शुरू से लेकर के एंड पूरे जो लाइफ साइकिल होगा ना किसी भी चीज का वो क्या होगा। कोई कंपनी का प्रोडक्ट वगैरह कुछ निकालती है, मान लीजिए एक प्लास्टिक की बोतल भी है, तो उसका भी पहले एक होता है कि सेट होता है कि शुरू से लेकर के एंड तक इसका लाइफ साइकिल क्या होगा, कैसे होगा। कंपनीज भी रिस्पॉन्सिबल है अपने अपने स्तर पर। जैसे कि यहाँ पर अगर यदि आपके पास बोतल्स हो जाती है तो आप लेकर के उसको जगह जगह पर सेंटर बने हुए उसमें डालते हैं तो आपको एक बोतल के 5-10 सेंट जो है वो मिल जाते हैं। तो लोग सारे इकट्ठा करके जाते हैं, रिटर्न कर देते हैं। तो वो पैसे के लिए नहीं, वो इसलिए कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम एनवायरनमेंट के लिए जो है अपना योगदान दे रहे हैं। दूसरा क्या होता है कि यहाँ पर अलग अलग डंपिंग ग्राउंड है जो स्पेसिफिकली बने ही इसलिए हुए हैं और वो बनाए भी इसी इस तरह से गए हैं कि उससे जो नीचे की जमीन है या नीचे जो पानी रिसे ना तरीके से बनाए गए हैं। और फिर उसके बाद जैसे अभी मैं कहूँ जहाँ पर मैं हूँ मेरे घर के बाहर हर मंगलवार को जो है तीन मेरे अलग अलग तरह के उन तीन बिन में एक में जो है रसोई का कचरा, जनरल कचरा और प्लास्टिक या रिसाइकल कचरा।
5: ललित जी एक एक क्षण रुकिएगा, ललित जी एक क्षण रुकिए। ममता जी
6: हेलो, नमस्कार सर।
5: हाँ ममता जी की आवाज भारत जी आप तक पहुंच रही है क्या?
1: 100% पहुंच रही।
5: चलिए ममता जी आपका स्वागत है और मुझे लग रहा है कि आप काफी देर से स्टूडियो के नंबर पे कॉल कर रही होंगी और आपकी आवाज बहुत देर में घूमते फिरते गोंदर से वाया करनाल नीलोखेड़ी पहुंची है और मैंने इसे दूर पहुंचा दिया है, अंबाला वितस्ता और दादरी और जितेश जी भी कहीं ना कहीं यहाँ होंगे, एफएम भारती हमारे साथ है, आपकी आवाज सब जगह जा रही है। ममता जी क्या कह रहे हो आज आप, क्या क्या कहने के लिए फोन किए, काहे फोन किए हो हमको?
6: सर मैंने यूं फोन किया है
5: जो कि गाने भी चाहिए, काम किया है तो बताना भी चाहिए, लेकिन ये जो महिलाओं की प्रतिनिधि हैं दादरी से ममता जी, ये ऐसे आपको जाने नहीं देंगी, हिसाब देना पड़ेगा कि आधी आबादी के लिए क्या विशेष किया। दीपक जी दीपक जी ये सवाल मैंने छोड़ दिया आपके लिए। ममता जी और कुछ भी आपको कहना है तो बताइए, नहीं तो मैं पहले ललित जी से उनकी बात पूरी करने के लिए कहूंगा फिर हम आपके सवाल का जवाब लेंगे दीपक जी से। आपके पास कोई और प्रश्न हो तो वो भी जोड़ दीजिए ताकि फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं।
6: मैं सर यही प्रश्न था, मैंने इसीलिए फोन किया, मतलब बातों के लिए जिक्र हो रहा
5: है। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आपका। जैसे ममता जी ने फोन किया हम और सीधा सा सवाल पूछ लिया कि भाई सारा कर लिया, इसका कर लिया, उसका कर लिया, महिलाओं का केक क्या करे सरपंच साहब, तो अब ये दीपक जी को बताना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले धन्यवाद आपका ममता जी, हम आपको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं लेकिन आपके सवाल का जवाब मिलेगा, दीपक जी को देना पड़ेगा। दीपक जी सवाल का जवाब तैयार करिए, ललित जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया में कचरा निपटान कैसे होता है इस पर आप कुछ कह रहे थे, जहां से छोड़ा था वहीं से बहुत संक्षेप में बात को संपन्न करिएगा।
0: जी ऑलमोस्ट सर मेन चीज तो यही है कि लोगों का जो योगदान है वो बहुत बड़ा है। लोग इस चीज को अपनी ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे बढ़ करके ये समझते हैं कि ये हैबिट है वो उनकी, एक्चुअली वो हैबिट ही बन चुकी है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कुछ। छोटा सा बच्चा भी होगा उसे भी पता है कि मुझे अगर कुछ खाया मैंने तो उसे बिन में डालना, वो हैबिट ही बन चुकी है, तो वो चीज बहुत अच्छी है। और उसके बाद जो है क्योंकि जो प्राइमरी स्टेप है उसी पर ही जब हम कचरे को अलग अलग कर देते हैं देन अलग अलग कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं जो इसका जो कचरा है उसका निस्तारण करती हैं अलग अलग जगह पर, जो डंपिंग ग्राउंड्स हैं वेल प्लान्ड है हर चीज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे देश जो भारत है उसके अंदर भी थोड़ा सा इस व्यवस्था को और ज्यादा अच्छा किया जाना बहुत जरूरी है, प्लान किया जाना बहुत जरूरी है और लोगों का जो योगदान है इस दिशा में वो बहुत ज्यादा जो है वो देने की जरूरत है। क्योंकि मैं देखता हूँ जब भी जाता हूँ काफी लोग जो काफी ज्यादा तो लोग अब इस चीज पे सुधर उधर तो नहीं कहूंगा, इस चीज को अच्छे से समझते हैं, पर मोस्टली सब लोग सड़क पर चलते हुए भी चीजें जो है वो फेंक देते हैं, जो कि अच्छा नहीं लगता।
3: जितेश जी कुछ कह रहे थे।
7: बिल्कुल सर, मैं हमारे साथ ममता जो हमारे लिसनर हैं, सबसे पहले तो रेडियो एनजीएफ 90.4 पलवल की तरफ से मैं जितेश राम राम हरियाणा में सभी अपने सहयोगी साथियों सुनने और देखने वालों को रेडियो परिवार की तरफ से राम राम कहूंगा। ललित भाई हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया सिडनी से जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत करूंगा और साथ ही साथ सर उनका धन्यवाद भी करूंगा कि वो हमारे लिए ऐप लॉन्च कर रहे हैं, बात बेशक से आईफोन की हो एंड्रॉइड की हो। और आज ग्रुप में मैंने देखा भी कि हमारे सरपंच साहब नागपाल जी ने जो हमारे साथ फोटोज और वीडियोस शेयर किए, तो उन्होंने कहा कि हम कल से इस पे काम करेंगे कि हमारी जो स्ट्रीम यार्ड की स्क्रीन है वहां पर हम इनके काम भी साझा कर सके, लोगों के साथ शेयर कर सके। दूसरा, सभी हरियाणा वासियों को मैं संदेश देना चाहूंगा कि 88 16 904 904 पर कॉल करके वे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सर एक सवाल मैं भी सरपंच साहब से पूछना चाहूंगा और ममता जी के सवाल में ही मैं सवाल जोड़ना चाहूंगा। ममता जी ने कहा कि भाई गांव की महिलाओं के लिए आदि आबादी के लिए आपने क्या कहा, क्या किया अब तक? सरपंच साहब ने कि बताया कि मैंने जिम बनाई है, ये सारी बात। सर मैं एक बात और आपसे आज पूछना चाहूंगा और वो बात आपको बिल्कुल ईमानदारी के साथ साझा करनी है, शेयर करनी है कि हमने अक्सर देखा है कि गांवों में बाल विवाह होते हैं, हमारे आसपास भी होते हैं। सर एज ए जनप्रतिनिधि आपने अपने गांव में ऐसी कोई चीज फेस की हो कि भाई कोई बाल विवाह हो रहा है, तो उसके लिए आपने कोई बाल कल्याण अधिकारी जो है उनको सूचित किया या आपने अपने समाज के तौर पे कि भाई बाल विवाह हो रहा है उसे होने दिया जाए?
2: जी पहले तो मैं ममता जी की बात का जवाब देना चाहूंगा और उनको राम राम कहूंगा अपनी तरफ
7: जी।
2: अब महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या थी कन्वेंस की, गाँव की गरीब महिला है उसके लिए बस, जिसका सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है वो गाँव की महिला ही ले रही है
7: जी।
2: जाने के लिए बंदा तो मोटरसाइकिल पे चला जाएगा, आज की डेट में किसी के पीछे लिफ्ट बैठ लेके जाने का भी समय नहीं है। तो मैंने महिलाओं के बारे ही सोच के, अपने गांव की बच्चियों के बारे ही सोच के वो बस लगवाई और बकायदा मैंने उसमें लिखा भी कि मेरे गांव की महिलाएं बच्चियां या जो स्कूल जाती है कॉलेज जाती है, जो गाँव की बुजुर्ग है जिनको पेंशन यहाँ से नहीं मिलती, कोऑपरेटिव सोसाइटी से पेंशन मिलती है, वो बस की सुविधा का पहले तो वो होगी महिलाओं के लिए। दूसरा पानी की समस्या, अब मेरे इधर तो दिक्कत है नहीं, उधर आप जाओगे कैथल से आगे तो गांव की महिलाएं सिर पे लेक लेके मटके पानी की व्यवस्था करती हैं, तो वो मेरे इधर वैसे मटके वाली तो व्यवस्था नहीं है, नहीं लेके जाते, तो पानी की व्यवस्था भी जो महिलाओं के लिए ही है। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं के नाम से ही जो कॉलोनी आती है वो माननीय प्रधानमंत्री जी है वो महिलाओं के वो ही समर्पित, उन्हीं के नाम से वो जो है वो कॉलोनियां बनती है, और जो इंडोर जिम या आउटडोर जिम वो भी महिलाएं ही उसका बेनिफिट ले रही हैं, महिलाओं के साथ पुरुष भी, और जो आउटडोर जिम है वहां पे तो केवल जाति ही महिलाएं हैं। इसके अलावा जो भी अगर आपका कोई सुझाव है या कोई मुझे और कोई महिलाओं के लिए अगर मैं बेस्ट कर सकूं तो आप भी मुझे बेस्ट बताओ ताकि मैं, और सबसे बड़ी बात मेरे योगा क्लासेस किसी भी
7: सर, बाल विवाह के बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूंगा
2: जी। बाल विवाह का ऐसा है, हमारे यहाँ पे बड़ोला में एक वो बना हुआ है जो इनका जो बनता है बाल विवाह को अक्सर वो रोकते हैं, उनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ, हर महीने की रिपोर्ट मेरे गांव से विद साइन है उनके पास, बड़ोला से हरविंदर नाम है उसका, आप उससे ले सकते हो कि मेरे गांव में कोई भी आपको बाल विवाह नहीं मिलेगा। इवन मैं नहीं, जब से पिछले 8 साल से 10 साल से मेरे गाँव में कोई भी बाल विवाह नहीं हुआ, और लोगों को अवेयर, आप देखो कि मेरे गाँव में साउंड सिस्टम है, मैं बीसी चौपाल में लगाया हुआ है, किसी भी चीज को दिक्कत होती है, किसी भी चीज को प्रॉब्लम होती है या किसी का भी कोई प्रॉब्लम हुई या गांव को किसी की जरूरत है, जैसे ये अब पीछे कोरोना काल में या इसके बाद अभी ये सर्जिकल स्ट्राइक जो है सॉरी युद्ध हुआ था या वो था पाकिस्तान के साथ हमारा वो सर्जिकल स्ट्राइक वाला था, एक ही जगह से बैठ के लोगों को हुटर लगाने पड़े, मुझे कोई हुटर नहीं लगाना पड़ा। तो मेन बात यही है कि बाल विवाह बड़ी बात है कि हमारे गाँव में दो लड़के हैं वो बड़ोला से ही हैं, वो बहुत एक्टिव हैं, अगर कोई ऐसी बात तो वैसे हुई नहीं, आप हर महीने की मेरी रिपोर्ट उनके रजिस्टर में साइन है, वो कहता है कि मेरे गांव में कोई भी बाल विवाह आज तक, जबकि मेरे सौतेली 15-20 साल में मतलब कोई बाल विवाह हुआ ही नहीं, तो उसके बारे में भी अगर कोई कैंप है जो भी उनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ, और इसमें कोई बाल विवाह हमारे इस एरिया में कोई है ही नहीं।
7: चलो सर हम आपकी पंचायत को और आपके प्रतिनिधि को धन्यवाद करेंगे कि आप ऐसे जन जागरूकता के कार्यक्रम को लेकर अवेयर हो, जागरूक हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पीछे हम बात कर रहे थे, समय का थोड़ा अभाव है, हम वीरेंद्र सर की तरफ चलते हैं और सर
3: प्रीतम जी, प्रीतम जी हाथ हिला रहे थे, कुछ है था प्रीतम जी कुछ बीच में?
4: मेरा सर सरपंच साहब की एक बात से मैं सहमत नहीं था कि पानी का जो बंदोबस्त किया वो महिलाओं के लिए किया, उस पानी को महिला नहीं पीती, वो महिलाएं तो अपने घर गृहस्थी के लिए, आप लोगों के लिए उन्होंने पानी की जरूरत है सरपंच साहब, न महिलाएं पानी नहीं पीती, पुरुष भी हम भी पानी पी रहे हैं, आपने महिलाओं के लिए पानी का बंदोबस्त नहीं किया, ये आपने आपके गांव के पूरी महिला पुरुष सबके लिए बंदोबस्त किया था, आप महिलाओं को कैसे ले रहे हो
3: इसमें? इसको मैं ठीक कर,
4: इसमें मैं सर एक
3: मैं इसको दुरुस्त करने की कोशिश, मेरी आवाज पहुंच रही है प्रीतम जी?
1: जी जी बोलिए सर।
4: हाँ जी आ रही है।
3: मैं इसमें कोई संदेह नहीं कि जब पानी का इंतजाम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, जल जीवन मिशन में हर घर नल से जल पहुंचाना सुनिश्चित किया, तो निश्चित तौर पर जब जल घर के आंगन में पहुंचा, रसोई में पहुंचा, नल से पहुंचा, साफ सुथरा पहुंचा, तो उसका लाभ पूरे परिवार को मिला, पुरुषों को भी मिला, महिलाओं को भी मिला। जो महिलाओं को अतिरिक्त लाभ मिला प्रीतम जी, वो आप चूक रहे हो उसको पकड़ने में
1: जी।
3: जहां पर पानी बाहर से भरकर लाना पड़ता था, कुएं से लाना पड़ता था, गांव के बाहर के ट्यूबवेल से लाना पड़ता था, हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में, हमारे उत्तर हरियाणा में तो शायद कम था, लेकिन उत्तर के परे का जितना हरियाणा है, मैं रोहतक रहा हूं, मैंने उस पूरे इलाके को, दक्षिण के हिस्से को देखा है, अधिकांश स्थानों पर जहां पानी की किल्लत थी, जहां मीठा पानी, खाना पकाने के लिए पानी, गांव का पानी खारा होने के कारण दाएं बाएं से लाना पड़ता था, वो अधिकांशतः महिलाएं ढोती थी
7: जी।
3: और मुझे तो एक और इंटरेस्टिंग घटना याद आ रही है, एक आकाशवाणी के एक निदेशक हुए हैं, मैंने उनका पहले भी किसी कार्यक्रम में जिक्र किया होगा, श्रीवर्धन कपिलम का निधन हो गया। श्रीवर्धन कपिल जी एक दिन हिसार से रोहतक जा रहे थे, आकाशवाणी हिसार के भी वो डायरेक्टर थे और रोहतक के भी थे, एडिशनल चार्ज था, तो हिसार से रोहतक जा रहे थे, रोहतक में महम के आसपास उन्होंने देखा कि महिलाओं की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, सिर पे एक मटका, दो मटका, एक टोकनी, दो टोकनी, हाथ में बाल्टी लेके वो पानी लेके जा रही है, उन्होंने पहले भी बहुत बार देखा था, तो वो जरा थे प्रीतम जी की तरह सवाल पूछने वाले व्यक्ति, तो कपिल जी ने मुझे बताई जो घटना कि मैंने चौहान साहब एक जगह देखा कि महिलाएं सारी पानी ढो रही हैं और गांव के जो लड़के हैं, ये यूपी वाले कह देते लोंडे ला रहे हैं ये, और पुरुष भी बड़ी उम्र के भी, ये सारे बैठ के ताश खेल रहे हैं, तो कहते मेरे अंदर क्यूरियोसिटी जगी, एक सवाल पैदा हुआ कि यार ये कैसे लोग हैं, भाई लोग बैठे हुए ताश खेल रहे हैं और महिलाएं पानी भी ला रही हैं, पशुओं का काम भी कर रही हैं, खेत का क्यारी का काम भी कर रही हैं, चारा भी ला रही हैं। तो कहते मैंने एक दिन गाड़ी जिप्सी रुकवाई और दो चार लड़के ललित जी की उम्र के वो खड़े थे और पूछ लिया, अरे भाई न्यू बताओ ललित भाई के ये गांव की जो माताएं बहने हैं ये पानी लेके आ रही है, तुम लोगों को नहीं लाना चाहिए क्या? तो जवाब रोतकाड़ा जवाब था, सोच लिया होगा आप लोगों को, पता चल गया होगा क्या जवाब था, जवाब था हमने दिया भाई तेरे घना दर्द हो रहा है तो तू भर ले जाके। तो ये जो पुरुषों को नहीं करना होता था भाई साहब, महिलाएं ढोती थी तो लाभ निश्चित तौर पर महिलाओं का ही हुआ है। गैस से खाना बना रही थी महिलाएं, गैस से अब खाना बनाने लगी हैं, वो चूल्हे पे बन रहा था, उसका धुआं पुरुष को भी जाता था लेकिन ज्यादा
1: असर
3: महिला के जी। तो गैस आई तो सुख उसको भी मिला है। खैर मैं दो तीन चीजें बीच में, अगर आप लोग अनुमति दें, प्रदूषण की बात हो रही थी, कचरे की बात हो रही थी, ललित जी का सजेशन ऑस्ट्रेलिया से चल के गोंदर और गोगड़ीपुर तक और अंबाड़ा और वितस्ता तक आ रहा था, एक दो जगह हमारे यहाँ ना देश में अच्छे काम हुए हैं। इंदौर की नगर निगम, उन्होंने एक प्रोजेक्ट, एक परियोजना शुरू की कि प्लास्टिक लाओ, खाने का सामान ले जाओ, फूड फॉर वेस्ट, कचरा, मतलब वो कचरा, सारा कचरा नहीं, प्लास्टिक वेस्ट जिसको थोड़ा हैंडल करना इकट्ठे करते समय आसान होता होगा। तो एक तो इंदौर नगर निगम का जिक्र आता है, इंदौर देश की सबसे साफ सुथरी, स्वच्छता में नंबर एक नगर निगम है, तो ऐसी योजना कामयाब हो जाती है, आओ जी प्लास्टिक की इतनी बोतलें ले आओ,
5: खाली जो आपने इस्तेमाल कर ली हैं, और उसके बदले में डोसा खा के चले जाओ हमारे रेस्तरां में आके।
0: इसको सर यूं कह सकते हैं, आओ जी लियाओ जी और खाओ जी।
5: आओ जी लियाओ जी और मतलब कचरा लियाओ जी और रोटी खाओ जी।
0: बिल्कुल सर।
5: ऐसे ही एक आध जगह देश में एक प्रयोग और किया, इस तरह के इस पैटर्न पर प्रयोग हो सकते हैं कि प्लास्टिक लाओ और बदले में पौधा ले जाओ निशुल्क, जाओ अपने आंगन में पौधा लगा दो। तो मल्टीपल दो डबल डबल काम हो रहे थे। इस तरह के कोई कार्यक्रम, कोई ना कोई कार्यक्रम इस तरह के लीक से हटके जब लोग करते हैं तो उनके परिणाम भी आते हैं। मुझे तो ये बात मुझे ध्यान में आ रही थी कि बीच में जोड़ दूं, ये ममता जी से रहा नहीं जा रहा है, इनका फोन फिर से आ गया, क्या मैं सुन लूं 30 सेकंड दे दें ममता जी को एक बार फिर।
1: मैं सर ये कहना चाहूंगा जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे हमारी देश की जो योजना है जल से नल से जल जो योजना है, अगर घर में पानी नल से आ रहा है तो वो हमारे महिलाओं के लिए ही है। हम तो पहले भी नहीं ला रहे थे, अब भी नहीं ला रहे हैं, तो इसलिए इससे बड़ी योजना क्या हो सकती है।
5: नहीं बड़ी योजना निश्चित तौर पे, ममता जी आ गई हैं दखल देने। ममता जी क्या कह रहे हो जल्दी से, आपके पास 30 सेकंड है। हर रोज तक की बेटी अच्छी तरह जाने हैं कि पानी नहीं लाते पुरुष। अच्छा ये सुधर गए, ये रोहतक आड़े सुधर गए, ममता जी तो ये कहने आई। ठीक है ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आपके सुझाव के लिए।
1: सर
5: दो सुझाव आ गए साहब।
1: सर मेरा भी एक सुझाव, मेरा भी एक सुझाव है जी, मेरा भी एक सुझाव है कि किसी अगले शो में ममता जी को आप एज ए गेस्ट लेके आओ, तो ममता जी से हम रूबरू बात करेंगे, क्योंकि ये हर एक बात पर एक राय रखती हैं, हमें कॉल करती हैं, तो इससे बढ़िया श्रोता हमारा कोई भी नहीं हो सकता है। कॉल वही करेगा जो प्रोग्राम कई दिनों से सुन रहा हो, जो हमारी बातचीत में दिलचस्पी ले रहा हो, तो एक दिन का मेहमान इन्हें भी बनाया जाए। और समय कार्यक्रम का खत्म होता जा रहा है, मैं आप सभी से इस हफ्ते के लिए तो छुट्टी मांगूंगा और कोशिश करूंगा कि जहां मुझे मौका मिलेगा मैं आप लोगों से जुड़ूंगा, नहीं तो विधिवत रूप से स्टूडियो में मैं अगले सोमवार को आपसे जुड़ूंगा। और मेरी ओर से सभी को राम राम जी। आप सभी समापन करें जी। वीरेंद्र सर
5: बस मुझे तो ये कहना है, ललित जी आपने कुछ जोड़ना है? सब लोग 30-30 सेकंड ले लीजिए, हालांकि हम एक मिनट पार चले गए अपनी निर्धारित सीमा से। जितेश भाई एक टिप्पणी।
7: सर कुछ क्वेश्चंस थे बट आज हमारे पास थोड़ा समय कम है, तो कल जो नए सरपंच हमारे साथ जुड़ेंगे हम कोशिश करेंगे कि उनसे वो सवाल जान पाए। और राम राम हरियाणा कैंपेन में आज के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू
5: प्रीतम जी।
4: समय की पाबंदी के कारण सर मेरे तो सभी को राम राम है, सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को। सर
5: जथेदार गुरविंदर सिंह
8: सब जाते जाते मैं आपसे मतलब आपको प्रयास कर रहा हूँ कि आप अपने समस्त जो हरियाणा के सरपंच जो और भी प्रतिनिधि हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं।
9: मैं यही संदेश देना चाहूँ कि हम सबको पहले तो मिलजुल के सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाना है कि कैसे हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा योजना का लाभ दिलवा पाए। और सरकार की योजनाएं जैसे जिम की लाइब्रेरी या और जितनी भी सरकार हमें दे रही है के साथ जुड़ना है। हमें राजनीति से पीछे हटके अपना भाईचारा कायम करते हुए एजिटेशन से नहीं, एक सरपंच जैसे हम एजिटेशन करने तो चले जाते हैं, हम सरपंचों को इकट्ठा होके माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलके अपनी समस्याओं को और उनकी योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लागू करना चाहिए। हम गांव के सरपंच हैं, हम कोई राजनेता नहीं है, तो हमें लोगों को कैसे लाभ मिले। सरकारी बहुत सी योजनाएं जिससे लोग वंचित हैं, अपना आपसी भाईचारा छोड़ के वोट की राजनीति छोड़ के इसने मेरी वोट डाली इसने वोट नहीं डाली, अब सरपंच के कोई साइन कराने आएगा चाहे पक्ष का है चाहे विपक्ष का है, वो मेरे जो सरपंच होता है उसी के पास आएगा। तो हमें यही है कि अपना भाईचारा कायम करते हुए अपने गांव में हम प्यार मोहब्बत से रहें और सभी सरपंचों को और आप सभी को मेरी राम राम। कोई गलत बोला हो तो मैं माफी चाहूँ।
5: ललित जी
0: जी मैं सबको धन्यवाद करना चाहूंगा। एक तो बहुत अच्छा कार्यक्रम जो राम राम हरियाणा है जो आप सभी ने जो स्टार्ट किया है बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि मैं अगर अपने जैसे लोगों को देखूं तो हमें सिर्फ अपने आसपास के थोड़े बहुत गांव का पता होता है और नाम भी पता होता है तो ये नहीं पता होता कि कहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप लोगों ने जो एक कार्यक्रम जो स्टार्ट किया है इसके तहत पता चलता है कि सच में हमारा हरियाणा और हमारे हरियाणवी कितने अपनी मिट्टी से जुड़ करके काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है, मैं इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कहूंगा और दीपक जी को मैं कहूंगा कि लगे रहिए इसी तरह से आप अच्छे कार्य जो है वो करते रहिए और राम राम हरियाणा हमेशा आपके साथ रहेगा और आप अपने जो अच्छे कार्य हैं जो आप करें उसे जरूर साझा करें।
3: तो लीजिए दोस्तों ललित जी के इस कई समंदर पार से आए संदेश के साथ आज राम राम हरियाणा को हम यहीं देते हैं विराम। कल एक नए मेहमान के साथ या एक से अधिक मेहमानों के साथ राम राम हरियाणा में फिर हम सब मित्रों की मुलाकात होगी। सप्ताह भर की छुट्टी पर चले हैं अपने गांव की ओर भारत जी, सोमवार तक के लिए भारत जी को राम राम और बाकी सबको कल तक के लिए राम राम।
1: धन्यवाद।
0: राम राम हरियाणा
1: की ऐतिहासिक सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को समर्पित है। ये दिन हर साल 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इस दिन को विश्व धरोहर दिवस के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पर इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के संयोजक रिटायर्ड कर्नल आरडी सिंह के माध्यम से अंबाला की अनूठी विरासतों की रोचक कहानियां हम आपके लिए लाए हैं। चार सौ साल पुराना है रानी का तालाब। रानी के तालाब एवं मंदिर निर्माण करीब 400 साल पूर्व महाराजा पटियाला के अधीन आने वाली छछरौली रियासत के राजा रंजीत सिंह ने करवाया था। राजा ने रानी के शाही स्नान के लिए यहां तालाब बनवाया था, जिसमें स्नान के उपरांत यहां बनाए शिव मंदिर में रानी रोजाना पूजा अर्चना करती थी। साल 1999 में इस मंदिर को सेना ने अपने सुपुर्द में ले लिया था। गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब आस्था का केंद्र, आठवीं सिख गुरु हरकिशन राय से संबंधित पंजोखरा साहिब धार्मिक आस्था का केंद्र है। गुरु हरकिशन राजा जय सिंह के निमंत्रण पर कीरतपुर से दिल्ली जाते समय पंजोखरा साहिब में रुके थे। सिख इतिहास के मुताबिक गुरुद्वारे में गुरु ने अपनी बाल्यावस्था में ही गूंगे व बहरे शख्स से गीता के श्लोक कराए थे। होली रिडीमर चर्च है बेहद खूबसूरत। अंबाला कैंटोनमेंट बसने के महज 5 साल बाद यानी 1848 में बना व 1905 में नए सिरे से निर्मित होली रिडीमर चर्च करीब 115 साल बाद भी बेहद खूबसूरत है। यूरोप की गोथिक शैली में इस कैथोलिक चर्च में एक साथ 800 लोग के प्रार्थना करने की क्षमता है। इस चर्च में भारत के एकमात्र कैथोलिक वॉइसराय 1880 से 1884 कोलकाता से शिमला जाते हुए आए थे। सेंट पॉल चर्च पर पाकिस्तान ने गिराए थे बम। सेंट पॉल गैरिजन चर्च का निर्माण 14 जनवरी 1852 में शुरू किया गया था, जो कि 4 जनवरी 1857 को बनकर तैयार हुआ था। 21 सितंबर 1965 को पाकिस्तान बम वर्षक विमानों ने छावनी स्थित एयरफोर्स स्टेशन को निशाने पर लिया था, लेकिन बम सेंट पॉल चर्च पर गिराए गए थे। देश के बंटवारे से पहले ये चर्च डायसिस ऑफ लाहौर की देखरेख में था। कोस मीनार, इन्हीं को देख के चलते थे सैनिक के काफिले। अंबाला शहर के रेलवे रोड पर कपड़ा मार्केट में बनी शेरशाह सूरी की कोस मीनार कभी सैनिकों और जीटी रोड से गुजरने वाले राहगीरों को राह दिखाने का काम करती थी। इस मीनार को 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। बीते जमाने में ये संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन्हीं मीनारों को देखकर सैनिक काफिले चलते थे और डाक सिस्टम भी इन्हीं के तर्ज पर चलता था। कब्रिस्तान में दफन है अंग्रेज सैनिकों के शव। अंबाला में 1844 में बने कब्रिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए अंग्रेज सैनिकों के शव दफन है। करीब 23 एकड़ में बनाए गए इस ईसाई कब्रिस्तान में 2 लाख के करीब कब्र थे। हर कब्र का अपना एक इतिहास है। यहाँ आज भी अंग्रेज अपने पुरखों की तलाश में आते हैं। प्राचीन अंबिका देवी मंदिर में 250 साल से जल रही है ज्योति। पिंडी रूप में विराजमान प्राचीन माता अंबिका देवी मंदिर के इतिहास का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन मंदिर में पिछले करीब 250 साल से मां की ज्योति निरंतर जल रही है। पुराणों में जिक्र और आस्था से जुड़े होने के कारण नवरात्र के मौके पर यहां शीश झुकाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। गुरुद्वारा लखनऊ साहिब में जन्मी थी माता गुजरी। पिंडी के रूप में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी का जन्म इसी गांव में हुआ था। दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने बाल अवस्था में अपने ननिहाल लखनऊ साहब में काफी समय व्यतीत किया। लखनऊ साहब में गुरु गोविंद सिंह जी के ननिहाल होने के कारण ये गांव सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की, और ये जानकारी हमें मिली अंबाला के एक मुख्य समाचार पत्र से। आने वाले दिनों में हम और रिसर्च कर आपको पूरी जानकारी हर एक हेरिटेज के बारे में देते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा और सभी लोग अंबाला की धरोहर के बारे में जानें। हम प्रयासरत हैं और हम हर दिन कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। अब मुझे दीजिए इजाजत। आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का फ्रीक्वेंसी 90.0 पर। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला केंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारे ये प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारी ये प्रसारण सुनते रहिए।

0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو. سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت. प्रस्तुत है कार्यक्रम सरगम एपिसोड 8. इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे आरजे किरनी. रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने और निर्देशन भारत सोपोरी का.
1: नमस्कार, सुस्वागतम. आप सुन रहे हैं सरगम का नया अंक. मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी. आपका स्वागत करती हूं इस खास प्रोग्राम में. आज के इस बेहतरीन सफर में हम आपको ले चलेंगे पुराने गानों की याद में. कार्यक्रम की पहली पेशकश है फिल्म सहरा के गाने से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने और जिसके बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और म्यूजिक दिया है रामलाल ने.

लीजिए आप सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ गीत, जिसे संगीत दिया है रोशन ने और फिल्म ताजमहल से।

लीजिए अब सुनते हैं रवि का संगीतबद्ध गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने फिल्म दो कलिया से, और उसके बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने।

0: अब पेश है फिल्म तलाश का गाना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में, जिसके बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और म्यूजिक दिया है SD बर्मन ने।
1: पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना।

लीजिए अब सुनते हैं जाने अनजाने फिल्म का गाना, गुलशन बावरा का लिखा हुआ, संगीतकार शंकर जयकिशन और आवाजें दी है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने।

कार्यक्रम की अगली पेशकश है रविंदर जैन, राजकवि और इंद्रजीत सिंह का लिखा गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने फिल्म चोर मचाए शोर से, जिसको संगीत से सजाया है रविंदर जैन ने।

अगली पेशकश है साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ गाना, जिसके संगीतकार है खयाम और जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने फिल्म कभी कभी से।

अब पेश है फिल्म जमाने को दिखाना है का गाना, जिसके संगीतकार है आरडी बर्मन, गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और अपनी आवाज से सजाया है शैलेंद्र सिंह ने।

लीजिए यह पेश है किशोर कुमार का गाया हुआ गाना, जिसके बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने और उसका संगीत दिया है खयाम ने, फिल्म कभी कभी से।

अगला गाना है मोहम्मद रफी और आशा भोसले के आवाज में, जिसके संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार है वर्मा मलिक, फिल्म जानी दुश्मन से।

अब आपको सुनाते हैं फिल्म बैरा का गाना, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने, फिल्म बैराग से।

खूबसूरत है तू हसीना बड़ी खूबसूरत है तू मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

0: इश्क़ करता हूँ आशिक मेरा नाम है
1: आशिक
0: इश्क़ करता हूँ आशिक मेरा नाम है ऐश करना मेरी जान मेरा काम है
1: ऐसे भी हो तुम

0: सभी श्रोताओं के नजर आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत, जिसके बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने, जिसे संगीत दिया है रवि ने, गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने, फिल्म एक महल हो सपनों का। इसके साथ ही दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: एक महल हो सपनों का।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरगम एपिसोड 8। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया आरजे किडनी ने, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने और निर्देशन था भारत सोपोरी का। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: नाइन्टी पॉइंट जीरो मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, सुनते रहिए दिल से।
2: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
3: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
2: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दे। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
3: अच्छा, बहुत खूब, अब भी संपर्क करता हूँ।
2: अभी कॉल करें 705641310 705641310 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

हेलो, इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। आधे घंटे तक आप बने रहेंगे मेरे साथ और हम यह सफर तय करेंगे मुस्कुराते मुस्कुराते। लब पर जो आ जाए तराना अच्छा लगता है, गीत नया हो या हो पुराना अच्छा लगता है। मैं हूं रमेश मराठा।

जब कभी फरामोश किया था, बर्फ की चादर पे चलते चलते, गुजरते गुजरते इन्हीं राहों पे, जहां आज हमारी चाहतों के टुकड़े अब बिखर चुके हैं। जब कभी रिश्तों की अहमियत तुम समझोगे, तब तुम खामोशी से, चुपके से आना और देना मेरी दहलीज पे दस्तक। शायद हम अपनी भूली बिसरी यादों को फिर से ताजा करें और जिए अपने अतीत के साथ, संभलते संभलते एक दूसरे को थामते हुए।

जहां तुम की तरह तुम अक्सर कहा करते थे, मौसम आएंगे मौसम जाएंगे, पर काश कभी तुम लौट के आती, अपनी चुप्पी तोड़ लेती, मुझ पे एहसान फरमाती, अपने आगोश की पनाह में मुझे रख लेती, फिर मोहब्बत करती चुपचाप।

हम तो अपना दर्द छिपाए बैठे हैं एक सदी से। मुझको कहां खबर थी कि तुम यूं खफा हो जाओगे और साथ निभाने का अहद भी तोड़ दोगे। तुम सामने होते हो पर हर पल ओझल हो जाते हो शबनमी बूंदों की तरह। क्या तुम्हें मालूम है ढूंढा है मैंने तुमको इस कायनात के जर्रे जर्रे में इन हवाओं में इन वीरानियों में खंडहरों में यहां इन बेनाम बस्तियों में इन पानियों की गहराइयों में। पर मिला बस एक लम्हा तुम्हारी याद का सिर्फ तुम्हारी याद का।

कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे, आओ चल के बीते दिनों की छाँव में बैठें, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें कोई फूल खिला था, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी आवाज की चांदी खनक उठी थी, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी की नजरों के मोती बरसे थे। कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे।

0: सच तो ये है कसूर अपना है, चांद को छूने की तमन्ना की, आसमां को जमीन पर मांगा, फूल चाहा के पत्थरों पे खिले, कांटों में की तलाश खुशबू की, आरजू की कि आग ठंडक दे, बर्फ में ढूंढते रहे गर्मी, ख्वाब जो देखा चाह सच हो जाए, इसकी हमको सजा तो मिलनी थी, सच तो ये है कसूर अपना है।
1: जब कभी मेरे आंगन में पेड़ों की इन्हीं शाखों पे लचकती थी चांदनी, जब खुशनुमा मौसम के इन हसी लम्हों में तुम्हारा करीब आना, रुक जाना, उठ जाना, फिर ढल जाना, बिना कुछ कहे दूर जाकर मोहब्बत का इजहार करना।

मुझको अब न आरजू कोई न है कोई तमन्ना, बस तुम यूं ही मेरे ख्वाबों में आते रहो, यही एक हसरत लिए बरसों से भटक रहा हूं। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा मुझे मेल करिए ramesh.marathan@gmail.com। अब चाहेंगे आपसे इजाजत और छोड़ जाते हैं आप।

जी आप सुन रहे थे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक रहते हैं। आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। आज के लिए बस इतना ही। स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:02:40। श्रोताओं, सुइयां गवाही दे रही है कि अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। मैं हूं आपका रेडियो होस्ट और दोस्त और हमसफर भरत सोपोरी। आप सुन रहे थे आपका अपना पसंदीदा स्टेशन FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता। आज 15 जून है। आज का दिन पूरे भारत और विश्व में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस यानी वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। आज के इस विशेष मोड पर रेडियो वितस्ता के माध्यम से मैं एक बहुत ही जरूरी और दिल को छूने वाली बात आपसे साझा करना चाहता हूं। हमारे बुजुर्ग है हमारा अभिमान, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान है, हमारी जड़ें हैं। श्रोताओं, हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि वक्त का पहिया हमेशा घूमता रहता है। आज हम जिस युवा अवस्था या जीवन के बागदौड़ में व्यस्त हैं, एक दिन हम सबको भी इसी वृद्ध अवस्था के पड़ाव पर पहुंचना है। अक्सर उम्र के इस मोड पर आकर हमारे बड़े बुजुर्ग अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। वे पूरे दिन घर में अकेले रहते हैं इसी उम्मीद से कि शाम को जब बच्चे घर लौटेंगे तो उनसे दो बातें करेंगे। यकीन मानिए, परिवार के सदस्यों के साथ बिताए गए महज कुछ मिनट, उनके साथ की गई थोड़ी सी बातचीत, पूरे दिन के अकेलेपन के बाद उनका दिल को एक असीम तसल्ली और खुशी दे जाती है। माता पिता का सम्मान और मां की ममता। हमें अपने सभी बुजुर्गों और माता पिता का दिल से सम्मान करना चाहिए, विशेषकर मां का, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हमारी खुशियों के नाम कर दी है। माता पिता का साया किसी वरदान से कम नहीं होता। उनकी दुआओं में वो ताकत है जो हर मुसीबत को टाल देती है। आइए आज रेडियो वितस्ता के मंच से हम ये संकल्प लें कि हम अपने बुजुर्गों को कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे, उन्हें वो सम्मान और प्यार देंगे जिसके वे हकदार हैं। जी हां दोस्तों, आज का ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील था। हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने बुजुर्गों को, अपने माता पिता, अपनी माँ का सम्मान करें। और जब आप मेहनत करके पूरे दिन के बाद घर आते हैं तो कम से कम 10-15 मिनट आप उनसे जरूर बात करें, बैठें, मोबाइल को एक साइड छोड़ दें, उनसे दिन के बारे में पूछें, और मुझे पूरा विश्वास है उन्हीं 15 मिनट में उनका पूरा वो दिन का अकेलापन खत्म हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है। आप जरूर सोचिएगा इस विषय में, और आप जब अभी रास्ते में होंगे, कार में सुन रहे होंगे, घर पहुंचेंगे तो सबसे पहले आप अपने वृद्धजनों के पास, अपने माता पिता के पास, अपने माँ को गले लगाएं और उन्हें कहें कि आज पूरा दिन थक के आपसे गले लग के बहुत अच्छा लग रहा है, सारी थकावट दूर हो रही है। और वृद्धजनों से जब बात करेंगे वे बहुत खुश होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, और क्योंकि वो हमारे जड़ें हैं, जैसे मैंने अभी कहा, वो हमारे अभिमान है, हमारे बुजुर्ग हमारे अभिमान है। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आज के स्टेशन को यहीं विराम देने का। चलते चलते रेडियो वितस्ता की ओर से ये विशेष पंक्तियां आप सभी के नाम रोज की तरह, पंक्तियां यूं है, बड़े बुजुर्गों की दुआओं से ही घर में उजाला रहता है। बड़े बुजुर्गों की दुआओं से ही घर में उजाला रहता है, इनके साये में हर बच्चा हर इंसान आबाद रहता है। बहती रहे प्यार की यह वितस्ता हमारे दिलों में सदा, बहती रहे ये प्यार की ये वितस्ता हमारे दिलों में सदा, कि बुजुर्गों के कदमों में ही खुशियों का जहां रहता है, कि बुजुर्गों के कदमों में ही खुशियों का जहां रहता है। जी हाँ दोस्तों, ये था आज का विचार और साथ में आज की पंक्तियां।
जाने से पहले आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूँ। कल 16 जून 2026 मंगलवार को जो कार्यक्रम आपके लिए लाए हैं वो इस प्रकार है। 5:58 पर हमारी सभा की शुरुआत होगी वंदे मातरम से और लाएंगे आपके लिए एक सुविचार। और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 6 सुनेंगे आप भक्ति संगीत। 7:05 पर घर परिवार एपिसोड 6, शीर्षक होगा परिवार और समाज। हमारे साथ होंगी आरजे किरनी, करेंगे ये कार्यक्रम प्रस्तुत। और हमारे साथ होंगी कविता अग्रवाल जी। 8:30 सकारात्मक कहानियों का एपिसोड 13 होगा, अपना ध्यान रखना भगवान। 9:30 होगा कार्यक्रम रेट्रो हिट्स। और 10:20 पर होगा कार्यक्रम नारी एक दर्पण, पेश करेंगे आरजे सेजल एपिसोड 2। संगीत की सभा जारी रहेगी, 6 भक्ति संगीत और 6:30 शाम में गजल और 7 रेट्रो हिट्स कार्यक्रम होगा एपिसोड 6, शीर्षक होगा जज्बात, पेश करेंगे आरजे किरनी। और 8:30 सोहना सफर करेंगे, पेश रमेश मरहटा। और कल की कड़ी है खुशबू। ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का। उम्मीद करते हैं कि आप अपना फीडबैक जरूर हमें भेजेंगे हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। इन्हीं खूबसूरत और मर्मस्पर्शी विचारों के साथ अब मैं भारत सोपोरी आपसे इजाजत चाहूंगा। कल सुबह फिर मुलाकात होगी नई उम्मीदों, नई गीतों, नई आवाजों और अपनों के साथ इसी स्टेशन पर। अपना और अपने घर के बुजुर्गों का खास ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार दीजिएगा। मिलते हैं कल सुबह 5:58 पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।